0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार।
0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
3: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
4: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
4: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने ऐं ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूदु हूंदा,
3: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
4: ऐं गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
3: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंद 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
4: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंद 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
3: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाड़ी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 2347-3141-200 केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें, हमें शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जियाउद्दीन शाह, वल्दे हजरत मौलाना सैयद हुसैन मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो, इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात फैलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालदीन हजरात से कि इन लम्हात से फायदा उठाए।
0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
1: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस।
0: इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
1: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
0: तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
3: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अघ मौजूद आहे।
4: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713023920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।

0: सीज़र नॉर्मल डिलीवरी अंडे पिते मसाने बया मुख्तलिफ़ किस्म जा ऑपरेशन कया वञन था जे लाए मुख्तलिफ़ किस्म जा माहिर डॉक्टर ए सर्जन 24 कलाक मौजूद हुंदा
1: जिते डॉक्टर बीमारिन जी माहिर डॉक्टर राहिला।

0: फिजिशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी, जनरल सर्जन, एसोसिएट प्रोफेसर, लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, हैदराबाद।
1: अमर सिंध जे सींध में
2: जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: खां रात जो 10 बजे ताईं
1: औलाद जो औरतुनि जे मर थियण कमज़ोरी ऐं औरत

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम,

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाव पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
5: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां खिदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओजिनेटेड यूरिफिटेड,
4: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
4: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
5: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
4: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिया भट्टी
5: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
4: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
5: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
4: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻायो सीमेंट जी सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
1: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
1: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
4: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 03132525786
1: जी हा 2315525786
4: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

असांजे सेंड करे सघो था ऐं तव्हां असांजे फेसबुक जे पेज ते बि तव्हां असांजे पंहिंजो नालो पंहिंजे सवाल जो जवाब लिखी मोकिले सघो था ऐं तव्हां असांजे मोकिले सघो था। असांजे स्टूडियो में मोबाइल आन थींदी फिक्स 10 बजे, तव्हां 10 बजे कॉल करे पंहिंजो नालो पंहिंजे सवाल जो सही जवाब लिखी करे तव्हां

असां ॾे कॉल करे नोट करे सघो था। असांजो नंबर आहे 0332-1322-88। असांजो नंबर आहे जी आसमिन, जेके दोस्त प्रोग्राम रोशन सुबुह में पंहिंजो हिन वक़्तु आन थिया आहिनि ऐं जेके प्रोग्राम कोन पिया ॿुधनि या जेके नवां दोस्त आहिनि, असां हुनखे हिकु दफ़ो नंबर वरी ॿुधाईंदासीं। त असांजो नंबर आहे 0332-1322-88। समय वरी हिकिड़ो ख़ूबसूरत नगमो अवां दोस्तनि जे नाम।

0: जी असमें प्रोग्राम रोशन सुबुह में तवां जो असांजो साथ रहंदो ठीक गुजारे वक़्तु दिन ॾह थियनि पिया हलंदासीं न्यूज़ ब्रेक ऐं कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ वरी वापसि ईंदासीं कॾहिं हिन मुंहिंजो असांजो सुवाल इहो ई आहे त सिज ऐं चंड में जे विच में मुफ़ासिलो केतिरो आहे
1: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
2: Bankal Habib. Rishta Bharose Ka.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.

अमरीकी सदर ट्रंप जो ईरान जंग जल्द खत्म करण जो ऐलान, ईरान ते बीहर हमला करण जी भी धमकी। तकरीब कई आहे ईरान के कंहिं बि सूरत में एटमी हथियार रखण न ॾींदासीं। ईरान जी नेवी फिज़ाया फौज खे ख़तम करे छॾियो आहे। ईरान जंग जल्द ख़तम करे छॾींदासीं। अमरीका में $18 ट्रिलियन सणपकारी कई आहे। एतिरी सणपकारी तारीख़ में कंहिं बि मुल्क नाहे थी। उन खां अॻु व्हाइट हाउस में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे ट्रंप जो चवण हो त ईरान ते ॿीहर हमलनि जी ज़रूरत पइजी सघे थी। ईरानी क़यादत डील लाइ मिनतूं करे रही आहे। डील न थी त हमलनि खां सवाइ ॿियो को रस्तो न बचंदो। ॿिनि या टिनि ॾींहनि अंदरि या ईंदड़ हफ़्ते खां ईरान ते हमला करे सघूं था। अब्बास इराकची ख़बरदार कयो आहे त अमरीका ॿीहर जारियत कई त सख़्त जवाब ॾिनो वेंदो। जंग में जेको सुखियो आहे उन जी मदद वधीक हैरत अंगेज़ रद अमल ॾिनो वेंदो। ईरानी नायब परॾेही वज़ीर काज़िम ग़रीबाबाद जो चवण आहे त कंहिं बि जारियत जो मुक़ाबलो करण लाइ तयार आहियूं। अमरीकी धमकी खे अमन जो मौको बणाए पेश करे रहियो आहे। ईरानी ख़ातम उलंबिया ब्रिगेड चयो त ईरानी फ़ौज जो हथ बि ट्रेगर ते आहे। हमिलो थियो त वॾे पैमाने ते जवाबी कार्रवाई कई वेंदी। तकड़े फ़ैसिला ते ताक़तवर ऐं वॾे पैमाने ते जवाबी कार्रवाई कई वेंदी। रूस जे सदर प्यूटन अॼु चीनी सदर शी जिनपिंग सां बीजिंग में अहम मुलाक़ात कंदो। ॿ तरफ़ा लाॻापा वधीक मज़बूत बणाइण ऐं आलमी सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल कई वेंदी। रूस जो सदर वफ़द सां गॾु गुज़िरियल ॾींहुं ॿिनि ॾींहनि जे सरकारी दौरे ते चीन पहुतो हो। चीनी परॾेही वज़ीर रूसी सदर जो इस्तक़बाल कयो। चीनी फ़ौज जे दस्ते पारां गार्ड ऑफ ऑनर बि पेश। ईरान जल्द मुआदो न कयो त ॿीहर जंगी मुहिम शुरू करे सघूं था। अमरीकी नायब सदर जेडे विंस जी धमकी सां चवण आहे त असांखे सदर ट्रंप नेकनीय ते असां ॻाल्हियूं करण जो चयो। ईरान पारां डील में देर जो मक़सदु इहो आहे त ईरान मुआदो नथो करणु चाहे। ईरान खे एटमी हथियार रखण वारे शर्त तां हथ खणणो पवंदो, न त मुआदो न थींदो। हक जी जंग में पाक फ़ौज दुश्मन खे मुंहुं तोड़ ऐं न विसरंदड़ सबक सेखारियो। हाणे दुश्मन कॾहिं बि पाकिस्तान ॾांहुं बुरी नज़र सां ॾिसण जी हिमत न कंदो। ईरान तकरार पूरे खिते खे गैर यकीनी वारे सूरतहाल ऐं मुआशी कमज़ोरीअ में धके छॾियो। पाकिस्तान जी सफ़ारती कोशिश जे नतीजे में ई अमरीका ईरान जंगबंदी जो ऐलान कयो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जो कोयटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज जे फैकल्टी ऐं तरबियत हेठि आफ़िसरनि खे ख़िताब। शहबाज़ शरीफ़ चयो त पाण खे ताक़तवर सम्झंदड़ दुश्मन खे जंग खां पोइ सफ़ारती मैदान में बि शिकस्त नसीब थी ऐं पाकिस्तान जे मौक़िफ़ खे दुनिया तस्लीम कयो। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम जे हक़नि जो लाॻीतो वकालत कई आहे। वलरल कश्मीर वासियुनि जे इख़लाक़ी सियासी सफ़ारती हिमायत जारी रखंदासीं। अफ़गान तालिबान रिजीम खे दहशतगर्द टोलनि ख़िलाफ़ असराइता क़दम खणणा पवंदा। बलोचिस्तान में जटादार अमन लाइ अवाम दोस्त पॉलिसी ऐं बहितर हुकमरानी अंटर आहे। पाकिस्तान जी तरक़ी रोकण जी कोशिश कंदड़ सदाई नाकाम थींदा। क्वेटा में फ़ौजी आफ़िसरनि खे ख़िताब कंदे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चयो आहे त हथियारबंद फ़ौज हर क़िस्म जी दहशतगर्द जे ख़ात्मे लाइ पुरज़म आहे। पाक फ़ौज अवाम जी हिमायत सां दहशतगर्द जे ख़ात्मे लाइ पुरज़म आहे। पाकिस्तान जी तरक़ी खे प्रोपेगेंडा या परॾेही सरपरस्ती में थींदड़ दहशतगर्दी ज़रिए रोके नथो सघिजे। जदीद जंगी तरीक़ेकार तेज़ी सां तब्दील थी रहियो आहे। फील्ड मार्शल जदीद टेक्नोलॉजी मल्टी डोमेन ऑपरेशन ऐं टिनी फ़ौजनि में गॾियल सहकार ते ज़ोर भरियो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है। दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
4: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
5: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां खिदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओजिनेटेड यूरिफिटेड,
4: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
4: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
5: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, अंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
4: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी,
5: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब,
4: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
5: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
4: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
1: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 03125252786।
1: जी हा 2315-2575-786
4: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

ऐं साईं जा असांजो जेको सवाल आहे त उहो सवाल असांजो जेको अॼोको आहे त चंड ऐं सिज जे विच में केतिरो मुफ़ासिलो आहे। अव्हां असांखे ॿुधाए सघो था मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वञी करे ऐं एल आर के लिखी स्पेस ॾेई तव्हां पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ जो नालो सवाल जो सही जवाबु लिखी करे तव्हां 888 ते असांखे सेंड करे सघो था। तव्हां असांजे मोबाइल नंबर ते बि पंहिंजो नालो लिखाए सघो था। तव्हां फेसबुक जे आई डी ते बि पंहिंजो नालो ऐं सवाल जो सही जवाबु लिखी मोकिले सघो था। असांजो नंबर आहे 0332132288। ऐं साईं जा चंड जे बारे में कुझु मालूमात अव्हां ताईं पहुचाईंदासीं ऐं असांजे सवाल जो सही जवाब बि इन मालूमात में आहे ऐं जेको अव्हां इन मालूमात जो थोरो फ़ाइदो वठंदा त साईं जा राति जे वक़्तु असां जे अङण ते जॾहिं असां सुम्हंदा आहियूं ऐं आसमान ते सितारनि जी सूंह में चंड खे बि ॾिसंदा आहियूं ऐं यकीननि उन वक़्तु असां चंड बाबति कुझु सोचींदा ज़रूर आहियूं त चंड असुल में आहे छा। साइंसदान चवनि था त चंड जो ॾींहुं राति ज़मीन जे ॾींहुं राति खां 14 दफ़ा वॾो आहे ऐं चंड ते ज़मीन जो पाशो मुकमिल चंड ग्रहण वक़्तु पवंदो आहे ऐं चंड ज़मीन जे चौधारी चकर ॾियण वक़्तु 2000 मेल फी कलाक जे रफ़्तार सां हले थो ऐं चंड ज़मीन जे चौधारी 27 ॾींहं 7 कलाक ऐं 43 मिंटनि में हिकु फेरो ॾिए थो ऐं साल में 13 भेरा चकर ॾींदो आहे। चंड ऐं सिज जे विच में 9,27,72,000 मुफ़ासिलो आहे ऐं चंड ज़मीन खां 2,29,857 मेल परे आहे ऐं चंड जो कतर बि 2,160 मेल आहे ऐं चंड जी रोशनी 1.33 सेकंड में धरतीअ ते पहुचे थी। तसमिन इहा मालूमात चंड जे हवाले सां हुई ऐं असां वहां ताईं पहुचाईसीं ऐं इन मालूमात में ई असांजे सवाल जो सही जवाबु हुयो ऐं जेकॾहिं तव्हां अञा बि जवाब ॿुधण बाद बि तव्हां मूंखे न ॿुधाए सघो त पोइ उन जो मां नालो ज़रूरु न हलाईंदुसि ऐं मां तव्हांखे सवाल जो सही जवाबु हिन मालूमात में ॾेई चुको आहियां ऐं चंड जे बारे में ॿुधूं था शमन अली मीरालीअ खे त हू छा पियो चवे।

जी हाँ साईं मुंहिंजा प्रोग्राम रोशन सुबुह में असां जेको सवाल नओ सीं त चंड ऐं सिज जे विच में केतिरो मुफ़ासिलो आहे। मां तव्हांखे चंड जी मालूमात में तव्हांखे सवाल जो सही जवाब ॿुधाए चुको आहियां, पर पोइ बि काफ़ी दोस्त कोन था ॿुधाए सघनि त असां अव्हां जा नाला ज़रूर लिखूं पिया। असांजी मोबाइल आन आहे स्टूडियो में ऐं उनजो नंबर आहे 0332123228। साईं मुंहिंजा जॾहिं को प्यारो माण्हू रुसी वञे त पोइ छा कजे? जेकॾहिं साईं मुंहिंजा प्यारो माण्हू रुसी वेंदो आहे त बेचैनी ऐं बेक़रारी थी पवंदी आहे ऐं उन बेक़रारी खे ॾिसंदे ऐं जेके पंहिंजा साथी हूंदा आहिनि पाड़े वारा हूंदा आहिनि त उनखे मोहबत में चाहत में चरियो बि सघंदा आहिनि, छो त चाहत जे दरिया में अणतारू बि पंहिंजे पीरीअ जे जी चीच पकड़े घिरी पवंदो आहे ऐं उहो नाहे ॾिसंदो नाहे ॼाणींदो त दरिया जूं छोलियूं केतिरियूं तेज़ आहिनि ऐं असांखे नुक़सान ॾींदियूं। पर हुन जे लफ़्ज़ ज़बान त हूंदो आहे पीरीअ जी सिक उकीर चाहत। त साईं जा पंहिंजे पीरी प्यारे जे ऐं महबूब खे यादि कंदे ऐं हुन जो जेको पंहिंजो बचपन आहे या हुन जेको पंहिंजी मोहबत जो आहे उहो यादगीर ईंदो आहे त पंहिंजो प्यारी पहिरियों प्यारो गॾु हुजे ऐं हुनखे माण्हू मयार बि ॾेई सघे थो, पर पीरीअ जो रुसणु जेको आहे उहो असांखे ॾाढो नुक़सान ॾींदो आहे।

0: जी असमें प्रोग्राम रोशन सुबह में तवाजो असो साथ रो बाकी अध कलाक है अध कलाक में तवे सवाल जो सही जवाब बुझा चुका हूं पर जिनके याद रहा उन जरूर बुधाई बाकी तवाजा नाला खड़ासी खूबसूरत नगमा आवाज नाव कंदी इन तरह पा कमर्शियल ब्रेक की तरफ
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन जी एफ एम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन के बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं ॾींहं कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
2: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
3: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
2: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अव्हां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
2: खुशखबरी खुशखबरी अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अव्हां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
3: सीज़र नॉर्मल डिलीवरी आंडे पिते मसाने ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
2: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
3: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
2: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
3: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
2: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शि ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM
3: 90.4 पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
1: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 03132525786
1: जी हा 2315-2575-786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

क्वेश्चन सब में असी अवां के जेको सवाल नोट करायो सी वो सवाल हुयो त सिज ऐं चंड जे विच में केतिरो मुफ़ासिलो आहे। त उन जो मां तव्हांखे जवाबु उन मालूमात में ॾेई चुको आहियां, पर मां तव्हांखे वरी क्लियर ॿुधायां थो त 9,27,72,000 किलोमीटरनि जो सिज ऐं चंड जे विच में मुफ़ासिलो आहे। जी हा, अव्हां जे ॼाण में मालूमात में इज़ाफ़ो कयूं पिया त सिज ऐं चंड जे विच में जेको मुफ़ासिलो आहे उहो आहे 9,27,72,000 किलोमीटर। इहो जेकॾहिं लिखी छॾींदव तव्हांखे ॿीहर जेको आहे सो मालूमात में तव्हां खां सवाल कंदासीं, तव्हां जवाबु ॿुधाए सघो था। ऐं जिन दोस्तनि प्रोग्राम में

ऐं गुलबहार झलोरी खां मीरपुर रामबदन पिया हुनजी वॾी महिरबानी। ऐं चनेसर बिहण आज़ाद बिहण मोरे खां माहोटन खां ऐं नज़ीर मंगरियो रोहिड़ी खां, सोराब मंगरियो बकापुर खां ऐं गुलाब मंगरियो हुन सां गॾु आहे नज़र मोहम्मद मंगरियो ऐं फरहान मंगरियो, तुफ़ेल मंगी ॻोठ खान मोहम्मद जिंझण लॻे कंगन खां, महबूब अली शर, रिज़वान अली शर, इमरान अली शर ठरी मीरवा खां ऐं हाफ़िज़ लखमीर ढिलू मोरे खां, फराज़ अली ऐं रफ़ीक अली सखर खां दोस्तनि जी वॾी महिरबानी। ऐं साईं मुंहिंजा हिन वक़्तु अव्हां जे नाक पिया ख़ूबसूरत नगमो।

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान।

0: आन रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जियाउद्दीन शाह वल्द हजरत मौलाना सैयद हुसैन मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो, इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात फैलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हजरात से कि इन लम्हात से फायदा उठाए।
2: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
3: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
2: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
3: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूदु हूंदा,
2: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी,
3: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब,
2: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
3: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
2: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।
4: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, थईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी, ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी, ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321230।
6: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
7: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻण लाइ खुशख़बरी।

जी समय साईं मुंहिंजा प्रोग्राम रोशन सुबुह हिन वक़्तु पहुची पए पंहिंजी पुॼाणी ते। पंहिंजी मेज़बान नेमतुल्लाह जुणे जो ॾींदा इजाज़त हयाती रही, तव्हां सां ज़रूरु मुलाक़ात कंदासीं। तेसीं ताईं ॾींदा इजाज़त अलाह निगहबान।

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib, Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: अमरीकी ऐवान में पेश कयो वेंदो हलंदड़ हफ़्ते ई वोटिंग जो इम्कान आहे. उहो इम्कान ज़ाहिर कयो पियो वञे त ईरान जी नाकाबंदी ऐं फ़ौजी हटाइण जो ठहराउ अमरीकी ऐवान बि मंज़ूर कयो वेंदो.

जंग में वापसी जी सूरत में अमेरिका के घणा सरप्राइज मिलंदा। जंग में कुछ सिखियो आहे, हुन जी मदद सां वधीक हैरत अंगेज़ रद अमल ॾींदासीं। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास अराग़ची जो रद अमल, ईरानी नायब परडे॒ही वज़ीर काज़िम ग़रीब अब्बास जी चवण आहे त अमरीका धमकी खे अमन जो मौक़ो बणाए पेश करे रहियो आहे, असां कंहिं बि ज़रूरत जो मुक़ाबलो करण लाइ तयार आहियूं।

अमरीकी नायब सदर एक तरफ ईरान से गालन में अकबराई की दावत बे तरफ ईरान हमलन की धमकी अमरीकी नायब सदर जेडेवेंस चाहे तो ईरान से गालन में अहम अकबराई थी है ईरान महदो करण चाहे तो ईरान के एटमी हथियार रखने वाली शर्त से हथ खणो पवो ये न थो तो ईरान खिलाफ जंग बीहर शुरू कदासी।

दरिया खान बरी वेझो नौजवान कतल घोट आदम लाशारी वासी 38 साल सोहेल लाशारी के अणॼातल जवाबदारनि कतल करे छॾियो। लाश खबरनि जे वणनि वटां हथ ॿुधाए पियो वञे त राति देर सां नौजवान खे फोन ते घुराए कतल कयो वियो आहे।

हिननि जे रुहानी पेशवा साईं सादराम जो मड़ अॼु सिंगापुर खां कराची एयरपोर्ट पहुचंदो। वारस ऐं ॿिया सोगवार वॾे अंग में कराची एयरपोर्ट पहुतल। तर्जमान रेड़की दरबार जो चवण आहे त मड़ कराची एयरपोर्ट पहुचण बाद एयर एम्बुलेंस ज़रिए सखर एयरपोर्ट आंदो वेंदो। आख़िरी रस्मूं सुभाणे सुबुह 10 वॻे रेड़की दरबार में अदा कयूं वेंदियूं।

0: ऐं पाकिस्तान खे बांग्लादेश जी टीम ॿिए टेस्ट में विच में पाकिस्तान शिकस्त ॾेई छॾी आहे। बांग्लादेश ॿिए टेस्ट मैच में पाकिस्तान खे 78 रन तां शिकस्त ॾिनी। बांग्लादेश जी टीम पाकिस्तान टीम खे मैच खटण लाइ 437 रन जो टार्गेट ॾिनो हो। पाकिस्तान टीम 358 रन ठाहे आउट थी वई। पाकिस्तान जे मोहम्मद रिज़वान 94, शान मसूद सलमान अली आगा 71 रन ठाहियूं। बांग्लादेश टीम तजल इस्लाम 6 विकेटूं वठी टीम खे कामयाबी ॾियारी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
1: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: सामीन व नाजरीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन हैं। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप जरूर पिलाइएगा।
3: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पेंजे शहर मातली में अवां जे जातल सुन्यातल एवान मेडिकल सेंटर में हाने हर किस्म जा ऑपरेशन कया वन था, जैमे
4: सीजर, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने बया मुख्तलिफ़ किस्म जा ऑपरेशन कया वन था, जे लाए मुख्तलिफ़ किस्म जा माहिर डॉक्टर ए सर्जन 24 कलाक मौजूद हुंदा,
3: जिते डॉक्टर आफ्ताब एवान जनरल फिजिशियन रोजानो मंजत 2 वगे का रात 8 वगे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदा, गायनोकोलॉजिस्ट आई औरतन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी,
4: ऐं गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब,
3: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझन 2 वगे खां शाम 4 वगे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझन 12 वगे खां 1 वगे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
4: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वगे खां 3 वगे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा, डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
3: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर, नज़द नोतकाड़ी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230 कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 03132525786
1: जी हा 2315-2576
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़
3: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GAFM 90.4

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: एलोवेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
3: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
4: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां खिदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग माप जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
3: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: जे इत्माद के कायम कंदे अवां जी जरूरत जो ख्याल रखदे।
3: ऑफिस हो जाए या घर या कारोबार, शादी ऐं बिन तकरीबन लाए हाणे असां सां राबतो करियो। असां वट मातली शहर वासिल लाए होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाए मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
4: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
3: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
4: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
3: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
4: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
3: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
2: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ

0: खुशखबरी चाहियो था अवां जे घरन जो छितूं पकियूं हुजन त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
2: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
0: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
0: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 03125252786।
0: जी हाँ 2315525786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारी जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
2: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
3: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
2: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अव्हां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
5: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: नौजवानों भरसा गुजरिए का कुम चले बिन बार मंजर लाश घर जी पेतिए माथे गोठखान में दिसकाणी में मासूम बाड़ी बुरका ए बारलो जमील सोमा हल्का शाम का गुम हुआ। पुलिस जो चवण है तो बारन जा लाश घर की पेटी में मिला है, वधिक जांच कई पी वे।
1: वेचोबर की सूरत हाल अहम मोड़ है, चिकटाणा की बीहर शुरुआत कें भी सूरत में कबूल।

0: हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग के रूसी सदर से मुलाकात दौरान गालबोल चीनी मीडिया मौजूद सरकारी दौरे से चीन पौतल रूसी सदर चीनी सदर से सरप्राइज इजलास में शिरकत कई। रूसी सदर चो तो मास्को ए बीजिंग विच में लागापा गैर मामूली हद तई वधी चुका है। पंजवी वरन में रूस ए चीन विच में व्यापारिकता में पंजवी सैकड़ो वाध थी है।
1: अमेरिकी सेनेट ईरान की नाकाबंदी ए फौज हटाने जो ठहराव मंजूर करे वरतो पर डे मीडिया मुजिब ठहराव 47 वोट से मुकाबले में 50 वोट से मंजूर थो। जंग सबब अमेरिका समेत सजी दुनिया की मईशत के बड़ो झटको लगो है। पर डे मीडिया मुजिब सेनेट बाद ठहराव अमेरिकी अवाम में पेश किया वो हलंदड़ हफ्ते ही वोटिंग जो इम्कान है। यो भी इम्कान जाहिर कर पे तो ईरान की नाकाबंदी ए फौज हटाने जो ठहराव अमेरिकी अवाम में भी मंजूर किया वो।
0: जंग में वापसी की सूरत में अमरीका के घणा सरप्राइज मिलंदा। जंग में जो सीखो है उनकी मदद से हैरत अंगेज रद्दअमल लींदी। ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकती जो रद्दअमल ईरानी नायब परदेही वजीर काजम गरीबाबादी चवण है अमरीका धमकी के अमन जो मौको बणाए पेश कर रो है। अस कें भी जारत जो मुकाबलो कर तैयार आय।
1: अमेरिकी नायब सदर की एक तरफ ईरान से गाल में अग भराई की दावा तो बे तरफ ईरान से हमलन की धमकी। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस चवा है ईरान से गाल में अहम अग भराई थी है। ईरान वायदो करण चाहे तो ईरान गेट में हथियार रखने वाले शर्त तह तो खड़नो पव ये न थो तो ईरान खिलाफ जंग बीहर शुरू कंदी।
0: दरिया खान वेझो नौजवान कतल घोट आदम लाशारी वासी 38 साल सोयल लाशारी के अंजातल जवाबदार कतल कर छो लाश खपड़न के वणन वटा हथ बुधा पे वे तो रात देर से नौजवान के फोन ते घुराए कतल कह वो है।
1: हिंदुन के रूहानी पेशवा साई साधाराम जो बहड़ो अज सिंगापुर का कराची एयरपोर्ट पहुंचन वारिस बया सोगवार वरी अंग में कराची एयरपोर्ट पहुंचल तजवान रेहड़की दरबार जो चवण है मह कराची एयरपोर्ट पहुंचने बाद एयर एम्बुलेंस जरिए सखर एयरपोर्ट आंदो वो आखिरी रस्मू सुभाने सुबह 10 वगे रेहड़की दरबार में अदा कई वेंदियों।
0: बांग्लादेश के टीम बी टेस्ट मैच में भी शिकस्त दई छी। बांग्लादेश बी टेस्ट मैच में पाकिस्तान के 78 रन से शिकस्त डी। बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान टीम के मैच खटने लाय 437 रन से टारगेट डनो हो। पाकिस्तानी टीम 358 रन सुठाए आउट थी वही। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान 94 शान मसूद ए सलमान अली आगा 71 रन सुठाय। बांग्लादेश के तजल्ल इस्लाम 6 विकेट वी टीम के कामयाबी दियारी।
2: सन क्रॉप ग्रुप का आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: सिंध के माथे का झूमर
4: GAFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।
5: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरखास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
6: खुशखबरी खुशखबरी साफ ए शिफाव पानी सेहतमंद जिंदगी की जमानत।
7: अवाजे पेंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल का खिदमत करे रहो है। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओजिनेटेड यूरिफिटेड
6: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पानी की बोतल
7: 6 लीटर पानी की बोतल ए बियो पानी जो बोतलू मुतारिफ कराए रहो है।
6: उनका अलावा असावत रिफिल जी सहूलत फिर सस्ते अगते मौजूद आहे
7: अवां जे इत्माद के कायम कंदे अवां जी जरूरत जो ख्याल रखदे
6: ऑफिस हो जाए या घर या कारोबार शादी ऐं बिन तकरीबन लाए हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासिल लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
6: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था जंहिं में
7: सीज़र नॉर्मल डिलीवरी आंडे पिथे मसाने ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा
6: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
7: ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर
6: डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन खां शाम 4 वॻे ताईं डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
7: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद
6: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
2: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
4: सुनते रहो GFM 90.4
5: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
2: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
2: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
5: 03132525786
2: जी हा 2315525786
5: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो नथियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश खबरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
1: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
1: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
4: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 03125252786
1: जी हा 2315525786
4: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

बुलेटिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

विच ओभर जी सूरत हाल अहम मोड़ ते आहे छिक तव्हांजी ॿीहर शुरूआत कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे। चीनी सदर शी जिनपिंग जी रूसी सदर सां मुलाक़ात दौरान ॻाल्हि ॿोल। चीनी सदर शी जिनपिंग चयो त जंग जे ख़ात्मे सां आलमी तवानाई सप्लाई जे इस्तेहकाम ऐं आलमी वापार में रुकावटूं घटाइण में मदद मिलंदी। ॿिनि ॾींहनि जे दौरे ते चीन पहुतल रूसी सदर व्लादिमीर पुटिन चयो त रूस ऐं चीन जे लाॻापन में गैर मामूली वाध आलमी इस्तेहकाम में मददगार साबित थींदी। ॿिन्ही मुल्कनि विच में स्ट्रेटेजिक सहकार जी गॾियल पधराई ते सहियूं कयूं वयूं।

ईरान खे हाणे वॾो लोडो ईंदो, वक़्त बि घटि अथसि। कुझु ॾींहनि में हमिलो करे सघूं था। अमरीकी सदर ट्रम्प चयो आहे त सूमर वारे ॾियाड़े ते जंग शुरू करण में सिर्फ़ कलाक

0: जो हो ईरान जंग तेजी से खत्म कर छड़ींदासी।
1: जंग में वापसी की सूरत में अमेरिका के घना सरप्राइज मिलंदा। जंग में जो सीखो है उनकी मदद से वधिक हैरत अंगेज रद्द अमल लींदासी। ईरानी परदे वजीर अब्बास अराग़ची जो रद्द अमल। ईरानी नायब परदे वजीर काज़िम गरीब आबादी जो चवण है अमेरिका धमकी के अमन जो मौको बनाए पेश कर रो है। अस कें भी जारियत जो मुकाबलो करने के लिए तैयार आयो।
0: अमरीकी नायब सदर एक तरफ ईरान से गाल में अकबराए की दावत, बे तरफ ईरान से हमलों की धमकी। अमरीकी नायब सदर जेड विंस ईरान से गाल में अहम अकबराई थी है। ईरान मुआहदो करण चाहे तो ईरान के हेठ में हथियार रखने वालों शर्त हथ खो पव। ये न थो तो ईरान खिलाफ जंग बीहर शुरू कंदासी।

अमेरिकी सेनेट ईरान जी नाकाबंदी ऐं फौज हटाइण जो ठहराउ मंजूर करे वरितो। परडे॒ही मीडिया मूजिबि ठहराउ 47 वोट जे मुक़ाबले में 50 वोट सां मंज़ूर थियो। जंहिं सबबि अमेरिका समेत सॼी दुनिया जी मईशत खे वॾो झटको लॻो आहे। परडे॒ही मीडिया मूजिबि सेनेट बाद ठहराउ अमेरिकी अवाम में पेश कयो वेंदो। हलंदड़ हफ़्ते ई वोटिंग जो इम्कान आहे ऐं इहो बि इम्कान ज़ाहिर कयो पियो वञे त ईरान जी नाकाबंदी ऐं फौज हटाइण जो ठहराउ अमेरिकी अवाम मां बि मंज़ूर कयो वेंदो।

वफाकी हुकूमत ईद उल अज़हा लाइ टिन ॾींहनि जी मोकल जो ऐलान करे छॾियो। वज़ीर आज़म जी मंज़ूरीअ सां काबिना डिवीज़न नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो। 26, 27 ऐं 28 मई ते मोकल हूंदी।

0: नव दंबालो भरसां गुज़िरियल ॾींहं खां गुम थियल ॿिनि ॿारनि जा लाश घर जी पेतीअ मां हथ। ॻोठ खान मोहम्मद इस्काणी में मासूम ॿारी मुर्क ऐं ॿारलो जमील सुमाल काल्ह शाम खां गुम हुआ। पुलिस जो चवणु आहे त ॿारनि जा लाश घर जी पेतीअ मां मिलिया आहिनि। वधीक जांच कई पई वञे।
1: हिंदुनि जे रूहानी पेशवा साईं सादराम जो मड़ सिंगापुर खां कराची एयरपोर्ट पहुचण बाद एम्बुलेंस ज़रिए सखर एयरपोर्ट रवानो। तर्जमान रड़की दरबार जो चवणु आहे त मड़ सखर एयरपोर्ट पहुचण बाद रड़की दरबार आंदो वेंदो। आख़िरी रस्मूं सुभाणे सुबुह 10 वॻे रड़की दरबार में अदा कयूं वेंदियूं।

सांगर वेझो भाव कार इल्ज़ाम हेठि भेण खे कुहाड़ी हणी क़तल करे छॾियो। नओं गोठ में जवाबदार 26 सालनि जी भेण खे क़तल करे छॾियो। पुलिस जो चवण आहे त नारी जी हफ़्तो अॻु शादी थी हुई। जवाबदार निंड सुतल भेण खे कुहाड़ियुनि जा वार करे क़तल कयो।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
3: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
1: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
1: ऐं हाँ गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
3: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 03125252786
1: जी हाँ 2315525786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

डायल करेंगे जो कि मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी, तो नंबर डायल कीजिएगा, उसके ऊपर नंबर के ऊपर रابطہ कीजिए और ने बताइए कि भाईजान हम भी लेना चाहते हैं व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हमें कहां से मिलेंगे और फिर वो आपको बता देंगे कि भाईजान आप कहां से जाकर परचेज करने वाले हैं। उसके अलावा अगर आपके एरिया में नहीं अवेलेबल तो फिर वो अवेलेबल भी करा देंगे। तो नंबर है जनाब 03157990595, ये नंबर डायल कीजिए जो कि महर इरफान सियाल साहब का नंबर है जो कि आप लोगों को रिस्पांस देने वाले हैं, और नंबर के ऊपर आप रابطہ करेंगे तो आप लोगों को बताया जाएगा, सही तरीके से गाइड किया जाएगा कि आप कहां से जाकर परचेज करने वाले हैं व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ठीक है, और दी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी। तो 03157990595 ये नंबर आप जरूर से डायल कीजिएगा। और उसके अलावा यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद हैं जी, बिल्कुल, आपकी मोहब्बतों का बहुत ज्यादा वाला शुक्रिया है। और ये हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं जी आदिल हुसैन, वालेकुम अस्सलाम, कहते खुश आयो जी जी। शायरी लिखी था, हमने तुम्हें लफ्जों में कैद करना चाहा मगर मोहब्बत इतनी गहरी थी कि कलम भी खामोश हो गया। मोहब्बत ये नहीं कि हासिल हो जाए, मोहब्बत तो ये है कि दुआओं में भी बस वही रहे। तुम्हें चाहा तो ये हुनर भी सीख लिया, मुस्कुराना दर्द में और जीना तुम्हारी याद के साथ। वाह वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मसरूर अहमद हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम मसरूर, कैसे हैं? कहते मुस्कान जी, हाँ जी बोले, कैसे हैं? अच्छा इमरान खान रुख हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, इमरान खान का रुख हमारे प्रोग्राम की जानब आ चुका है, सो बहुत शुक्रिया जी, वेलकम करते हैं। दातुल अहमदानी हमें सुन रहे हैं, कहते हैं गाना, अच्छा ठीक है गाना सुनाएंगे। और किशोर भाई कहते हैं कि खूबसूरती की बात हो और स्मार्ट ना हो, ऐसा कभी ना हुआ है और ना कभी होगा। ये तो सही बात है वैसे। और कहते हैं घर के ताने सुनने का सबसे ज्यादा हक लड़कियों का होता है, क्योंकि हम ज्यादा घर में नहीं होते ना, तो सिर्फ आराम करने घर जाते हैं, इसीलिए हाँ ये वैसे सही बात है। और हालात हमारे साथ मौजूद है, और के जी वालेकुम अस्सलाम, दर्दे दिल हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम प्यारी, कैसी है? और इकबाल आशरी हमारे साथ मौजूद है, मीरपुर खासी हमारा शो सुन रहे हैं, वेलकम करते हैं प्यारे भाई को। अनवर भाई आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, कहते फिर ओके जी। एस एन अरबानी भी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, कहते ओ माय फेवरेट आरजे, कैसी हैं आप? वेलकम दिल से व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो में, आपको भी दिल गुर्दे फेफड़ों सबसे वेलकम करते हैं। अनवर भाई आपने शायरी लिखी है, शायद ये थोड़ी सी समझ नहीं आई, तो बहुत शुक्रिया के साथ आपको वेलकम करते हैं। और साथ साथ आप लोग पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए भाई जान, मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे जो पाले पाले लिसनर्स है ना, वो कितना ज्यादा हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करते हैं, साथ साथ दोस्तों को जो है ना वो मेंशन करते जाइए। और इसके अलावा एक और बड़ी बात की टॉपिक को फॉलो करते जाइए, और मुझे बताइए कि क्या आप कभी बिना वजह रेडी हुए हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिना वजह तैयार रहते हैं, हमेशा तैयार कि बस कोई बोले कहीं जाना है तो वो बोलते हैं चलो। हम यहाँ पर जाते हैं जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ही जाने, तो आपने कहीं नहीं जाना, बस आप हमारे साथ मौजूद रहिए, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारे साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते जाइए, खूबसूरत होते जाइए।

0: It's one.
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
3: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नस्लन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो।
4: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है। दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
5: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
3: अवां जे पंहिंजे शहर माथली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
2: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713800392।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
3: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
2: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी,
3: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
2: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंद 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
3: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंद 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
2: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
2: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
4: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
2: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
2: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 03132525786
2: जी हा 2315-2575-786
4: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरखास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
4: सुनते रहो GFM 90.4।

आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM88 नेटवर्क. हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सगरन मेहरापुर मादिली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपके सदराब के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं. व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से. तो लगाते जाइए, खूबसूरत होते जाइए, खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाते जाइए. ओके जी, तो मैंने आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल पूछा कि आप मुझे बता रहे हैं कि क्या आप कभी बिना वजह रेडी हुए हैं. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना वजह हमेशा रेडी शेडी रहते हैं, तैयार शयार रहते हैं. तो आप मुझे बताएं कि क्या आप भी बिना वजह रेडी होते हैं या फिर आप उन लोगों में शामिल नहीं होते. ओके जी, सो जल्दी से हमारे प्रोग्राम का ऐसा बन जाइए और बताइए इस तरह की आप भी हमारे साथ मौजूद है. और साथ ही साथ अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स को, तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आप लोगों को जो ना पहले बता दिया कि भाई किस तरह के ये प्रोडक्ट्स हैं और आपने किस तरह जो है ना इनको परचेज करना है. लेकिन अब बात जरा यहां तक पहुंच गई है कि आप लोगों को बताया जाए कि अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ये आप लोगों के एरिया में भी मिल रहे हैं. आप लोगों को पता भी है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं. लेकिन बात यहाँ पर आकर जो है ना वो थोड़ी सी खुल जाती है कि आप लोगों को इस चीज का पता होना चाहिए कि जब आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो आप क्यों इस्तेमाल करेंगे. सबसे बड़ी और सबसे अहम बात यह होती है कि भाई आप लोग जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि इस प्रोडक्ट के ये वाले फायदे हमें मिलने वाले, इन चीजों से ये प्रोडक्ट तैयार शुदा है और ये वाले फायदे हमें मिलेंगे जब हम जो है ना इस्तेमाल करेंगे व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम. तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो है ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो है ये नाइट क्रीम है, यानी कि रात के टाइम लगाने वाली क्रीम है. और उसके अलावा ये एवोकाडो और एलोवेरा से तैयार शुदा है. तो एवोकाडो भी आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, एलोवेरा तो भाई आप जानते हैं बहुत ज्यादा जरूरी होती है. एलोवेरा से आपके चेहरे पर जो ड्राइनेस होती है वो खत्म हो जाती है, आपके चेहरे पर एक्नी का मसला है वो खत्म हो जाता है, आपके चेहरे की स्किन स्मूथ हो जाती है, क्लियर हो जाती है और आप हमेशा के लिए खूबसूरत हो जाते हैं. तो जब आप इस्तेमाल करते हैं जनाब व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आपकी जल्द की खूबसूरती और निखार के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ब्यूटी क्रीम है. ये आपकी जल्द को नरमी मुलायम करती है और आपकी जल्द को हमेशा तरोताजा बनाए रखती है, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें ऐड की गई है वो सारी आप लोगों की स्किन के लिए फायदेमंद है. और साथ साथ जबकि आप इस्तेमाल करते हैं ताकि जल्द जो है वो ज्यादा साफ और चमकदार महसूस होने लग जाती है. जब आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो स्किन है ना वो किसी भी टोन की हो तो आपको बेफिक्र होकर लगानी चाहिए, क्योंकि ये ऑल स्किन टाइप के लिए है. और जनाब सबसे बड़ी बात कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो वो ये जरूर आप देखा करें कि ये ऑल स्किन टाइप के लिए है या नहीं. तो जब आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो ये ऑल स्किन टाइप के लिए प्रोडक्ट है, हर कोई लगा सकता है, लड़के लड़कियां सभी लगाएंगे और साथ साथ खूबसूरत हो जाएंगे. तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम के साथ आपको व्हाइट एज ब्यूटी सोप भी मिल रहा है. व्हाइट एज ब्यूटी सोप आप परचेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल जी व्हाइट एज का ब्यूटी सोप आप परचेज करेंगे. और साथ साथ अगर आप साबुन नहीं लगाते हैं, आप फेस वॉश लगाते हैं, तो आपके लिए व्हाइट एज का विटामिन सी का फेस वॉश मौजूद है जो कि आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये बहुत ही शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं. और साथ ही साथ अगर आप एक्नी की वजह से शदीद वाला परेशान है तो भाई परेशान मत हो, ये वैसे भी जब गर्मियों का सीजन आता है ना तो बहुत से लोगों के चेहरे पर ये एक्नी का मसला ना ये आना स्टार्ट हो जाता है, चाहे आप टीनेजर्स हो या फिर बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे उनकी एज चाहे कितनी भी हो ना, लेकिन उनके चेहरे पर अगर एक मरतबा एक्नी आ चुका ना तो उसने ये बोलना है कि भाई मां हानिकारिक होने में तो मामा इतने उनम ताजा एक्नी के चो बाबा हलो आने तांजी मोकल थी भैया. तो एक्नी के खत्म कयो, एक्नी जलाए डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी जिकवाने ही ट्यूब अवेलेबल आ तवां जलाए तवां ही एंटी एक्नी ट्यूब लगाए सगो था जेको डॉक्टर पिंपल जे नाले सा है. डॉक्टर पिंपल जो ही ट्यूब आहे जेको आयुर्वेदिक फार्मुलेशन तैयार थियल आहे, तवां दुकानदार के चवंदा ना बाबा असां के डॉक्टर पिंपल ट्यूब जो जेको व्हाइट एज वारन जो आहे त हू तवां के इजी ले ॾेई छॾींदा. हुन खां अलावा लॻाइण जो तरीक़ेकार बिल्कुल आसान आहे, त जेको ही डॉक्टर पिंपल वारो एक्नी वारो ट्यूब आहे न इनके तव्हां राजे टाइम लगाएं था, राजे टाइम तव्हां बिल्कुल लगायो, ॾींहं में अगरि लॻाइण चाहियो था त थोरो मतिलब थोरो चीज़ूं जेके न थोरी कॉम्प्लीकेटेड थी वेंदियूं आहिनि, पर तव्हां राजे टाइम लॻायो, ॾाढो मुनासिब वक़्तु हूंदो आहे. सो पंहिंजो मुंहुं जेको आहे न अच्छे तरीक़े सां साफ़ कयो, धो पंहिंजे हथनि खे साफ़ कयो, सफ़ा धोई साफ़ सुथरा थी करे पोइ तव्हां पंहिंजे चेहरे ते डॉक्टर पिंपल जो जेको ट्यूब आहे न इहो अप्लाई कंदा. जिते जिते दाणो आहे, जिते जिते निशान आहे, जिते जिते एक्नी आहे, जिते जिते पिंपल आहे, जिते जिते तव्हांजो कोई निशान आहे या जिते कोई सड़न जो निशान आहे, कट जो निशान आहे, उन सभिनी निशाननि खे तव्हां जमा करे उते सभिनी ते तव्हां डॉक्टर पिंपल जो ही ट्यूब लॻाईंदा. ऐं ट्यूब लॻाइण खां पोइ तव्हां छॾे ॾींदा. सुबुह जो उथी करे तव्हांखे दुबारा जेको पंहिंजो फेस वॉश करणो आहे ऐं उन खां पोइ तव्हां ॾिसंदा त बाबा तव्हांजे चेहरे ते जेको रिज़ल्ट आहे न अचण शुरू थी विया आहिनि, नवां कम स्टार्ट थी वियो आहे. सो तव्हां लाज़मी लॻाइजो, तव्हांजी खूबसूरती वधंदी वेंदी. उन खां अलावा हिकिड़ो ॿियो प्रोडक्ट आहे जेको सफ़ा असां सभिनी जो राज दुलारो थी वियो आहे, जंहिंजो नालो आहे व्हाइट एज जी लवली क्रीम. सो व्हाइट एज जी लवली क्रीम जे तरफ़ अगरि असां अचूं त हिन जे बारे में तव्हांखे नॉलेज हुजणु ॾाढी ज़रूरी आहे.
तो व्हाइट एज की जगह लवली क्रीम आए ना, ये तमाम जबरदस्त क्रीम आए व्हाइट एज की लवली क्रीम जगह है। ये रेडियंट अल्ट्रा वाइटामिन सा तैयार थे जिसके अंदर ट्री वाइटामिन जा कैप्सूल मौजूद है, समझो था जिनमें हर तरह जो वाइटामिन तवा के मिली वो, चाहे वो वाइटामिन B3 हो, वाइटामिन सी हो, वाइटामिन ई हो, वाइटामिन डी हो, हर वाइटामिन इन अंदर मौजूद है, ट्री वाइटामिन आय समझो था। उन अलावा वाइटामिन से भरपूर है। व्हाइट एज की जगह लवली क्रीम है इनके अंदर सनस्क्रीन भी मौजूद है। सनस्क्रीन जो है ना वह इन भाई एड कई वही है इनके अंदर, तो जी तुम इस्तेमाल करो तक खूबसूरती भी मिले तुम्हारी स्किन की हिफाजत भी थी सके। तो व्हाइट एज की लवली क्रीम तुम इस्तेमाल कर खूबसूरती मिली तवी स्किन प्रोटेक्ट रही अगर कोई भी मेकअप न था यूज करना चाहो तुम कोई भी अड़ो प्रोडक्ट ना लगा सको जो तीको ना गर्मी के मौसम में तवे डिस्टर्ब कह तो व्हाइट एज की लवली क्रीम लगा सको था जहा लाइट वेटेड है मतलब इजी आने जो फार्मूलो बस तुम डी जो लगाओ सुबह जो लगाओ मंझंद जो लगाओ रात जो लगाओ जड़े टाइम दिल से लगाओ में कोई भी एज जो लिमिट ना है तुम हर एज में लगा सको जो टेक्सचर है ना स्मूथ है ढी वीआईपी क्रीम है सो तुम लगाए तो तक पा मजो अची वो व्हाइट एज की लवली क्रीम तो लाजमी ट्राई कर दिसो जी मू ये सोचा तो बाबा असा नाइट क्रीम ना लगा सकूं असा फलाना हेवी प्रोडक्ट न लगाइंदा तो बाबा तुम व्हाइट एज की लवली क्रीम एक दफो मुझे चवन से लाजमी लगा दिसो। सो व्हाइट एज की लवली क्रीम तुम सब लगाओ सफा लवली लवली थी वनो उन गडो गड ही तमाम प्रोडक्ट है जो तुम इजीली लगा सो किथा भी वही पे करीबी जनरल स्टोर से परचेज कर सो था अगर न भी मिलन था तो उन डायल कर जनाब 03 1579 0595 ही नंबर तवाजे आसानी से लाया है करीबी जनरल स्टोर तवा नी पुछा करे सगो था मिलन था तो बढ़िया न था मिलन तो पोई तवा ने नंबर ते राप्तो करे सगो था ठीक है। सो राप्तो कयो बाबा अवेलेबल कराइंदा वयो उन खा अलावा जेको आहे न त खाली तुम वही इजीली वी सो सो मुख्य ही वो गानों हलो हो तो हरू भरू हली वो। ओके जी सो प्रोग्राम है व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड कर व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट किताबन से तुम्हारी सिदरा तुम सब मौजूद है मूसा गड केर है बुधाइंदा वो पाया तुम्हारा मैसेज आज कॉमेंट है फेसबुक वो पोस्ट के लाइक शेयर करना हलो जो खबर पे बाबा

किशोर भाई उहो निशान बि हटिजी वेंदो, बसि तव्हां लॻाए ॾिसो कोई बि निशान आहे, कहिड़ी बि टाइप जो निशान आहे तव्हांजो रिमूव थी वेंदो जॾहिं तव्हां डॉक्टर पिंपल जो ट्यूब इस्तेमालु कंदा। सही आहे।

ओके जी, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. हैप्पी संडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सिद्रा मुस्कान. कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. आप बताएं कैसी हैं? फजीला सिंधी और उसके अलावा हैं हमारे साथ अरीबा. ओ प्यारी आपी जान, प्लीज प्ले ये वाला गाना. बिल्कुल जी, ये वाला गाना लगाते हैं आपके लिए. और मेरे पर खास अब्दुल्ला महर हमारे साथ ही. वालेकुम अस्सलाम बाजी. व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम नाइस है. सॉन्ग सुनाए शमन का. ओके जी ओके. एडम हमारे साथ कहती आपी मुझे भी सॉन्ग सुनाओ. जी मैं कोशिश करती हूँ सबके गाने लगाए. और ये मीरपुर खास से शुएब महर हमारा शो सुन रहे. शुएब आपको भी वेलकम करते हैं. अब्दुल्ला महर आप क्या कहते हैं कि बाजी व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम बहुत अच्छी है, जबरदस्त क्रीम है. बिल्कुल जी आप इस्तेमाल करते रहिए, ऐसे ही हमें बताते रहिए. और गुलाम शमीर तुनियो भाई हैं फ्रॉम कंबर हाई. आप ही आप कैसे हैं? गुड आफ्टरनून. हम भी अच गया आपके शो में. शो इज ब्यूटीफुल. आप ही सॉन्ग तो सुनाए मंजूर सिहिरानी की आवाज में है. अदम ॾिसां थी गानो मूंखे मिलियो त तव्हांजे लाइ हलायूं था. ठीकु आहे. और ये बेवस हमारे साथ है. बेवस जेडे बलोच दरगाह साईं जमाल शाह से. ओके जी, मोरो से आप हमें सुन रहे थे. अस्सलाम वालेकुम. मौलाना सलामत बाजी, यकीनन आप ठीक होंगी और ऐसे ही हमेशा हंसी मुस्कुराते रहे. बहुत शुक्रिया भाई जान, आपको वेलकम करते हैं. ये हैं जी, अस्सलाम वालेकुम आप ही जान. आइए फादिल लाशारी, काफी टाइम के बाद आपके शो में शामिल हो रहा हूँ. टॉपिक जवाब में हर वक्त तैयार नहीं रहता. आज ओएसटी तो सुनाइएगा पोएट्री के साथ. ओके, और आपने सबको सलाम दिए हैं. सो वालेकुम अस्सलाम.

Vay be baba. ओगरी तमाम खूबसूरत गानों असा बुधो सी के अलावा नारो खाए मामले नो बमरो हमारे सारे के बिना वजह जी तैयारी जो को भी इरादो न हों दो आहे मोन जो चले ही अच्छी बात है वैसे और ये मौजूद है यहाँ पी न्यू शो में दिल से वेलकम ये फादिल लीला शारी मैं पढ़ाई में बिजी रहता हूँ इस वजह से आपके शो में कम कम आ सकता हूँ यू आर बेस्ट आर जे बहुत शुक्रिया भाईजान आपकी मोहब्बतें इस काबिल हमें समझते हैं वरना नाचीज मानू ऐसा और बेवस जेड बलोच हमारे साथ कहते दरगाह साईं जमाल शाह से ओके जी चौथा दिल तोड़ कर हंसते हो मेरा शायद ये तमाम गानों लिखे हुआ है तो मोबतू वोट मोहम्मद तैयब थेबू खां हबीबुल्ला थेबू तवहां जो शो वेरी नाइस आहे सलाम तवहां के वालेकुम अस्सलाम भा मोबतू

भाई को शेयर करो। अच्छा दर्दी दिल हमारे साथ मौजूद है, घर जाके शो सुनूंगी, आप कहीं शायद बाहर हैं, वेलकम करते हैं स्वीटी को। और हमारे साथ जी अच्छा कुछ कमेंट्स ना आप लोगों के ऊपर चले गए हैं, तो जिनकी कमेंट नहीं मैं पढ़ सकी हूँ तो जरा काइंडली दोबारा शेयर कीजिए हमारे साथ। ये गाना किसी भाई ने मुझे फरमाइश कर दिया था तो उनको डेडिकेट करते हैं। अली अकबर बरोही भाई हमारे साथ मौजूद है, वेलकम प्यारे भाई। गुलाम हुसैन हमारे साथ हैं, हेलो। इखलाक बलोच कहते नाइस शो आंसर बिना वजह रेडी असान छू कुराड़ियों थींदियूं आहिनि इन लाइ असां तयार ही नाहियूं थींदा। वाह वाह क्या बात है। अच्छा किशोर भाई कहते अदीब बचपन का हमेशा दोस्त आस पास वारा पड़ोसी कदें भी सामू इंदा हुआ ये चवंदा हुआ दे खबर तैयार लगो पयो आही किथे वनी पयो छा जो साग्यो हाल अन्या ताई आहे यानी तवां की आदत आ हमेशा का तैयार रहण जी या वेसे सुठी गाल हुंदी थव हमेशा ये चिकना रहो जेको मानो डसे दे छे दियो खबर नाडी वनी पछा बिला।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 2 PM. This time check is brought to you by
2: जने माँ पांजो ख्याल रखन्दी आहे तस्सेहत नस्लन ताई हलन्दी आहे। ही पेगाम कश फाउंडेशन एंड कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: विच ओभर जी सूरत हाल अहम मोड़ ते आहे छकतां जी बीहर शुरुआत कंहिं बि सूरत में क़बूल नाहे। चीनी सदर शी जिनपिंग जी रूसी सदर सां मुलाकात दौरान ॻाल्हि ॿोल। चीनी सदर शी जिनपिंग चयो त जंग जे ख़ात्मे सां आलमी तवानाई सप्लाई जे सेकाम ऐं आलमी वापार में रुकावटूं घटाइण में मदद मिलंदी। ॿिनि ॾींहनि जे दौरे ते चीन पहुतल रूसी सदर व्लादिमीर पुटिन चयो त रूस ऐं चीन जे लाॻापनि में गैर मामूली वाध आलम इस्तेहकाम में मददगार साबित थींदी। ॿिन्ही मुल्कनि विच में स्ट्रेटजिक सहकार जी गॾियल वधाई ते सहियूं कयूं वयूं।
1: ईरान खे हाणे वॾो लोडो ईंदो, वक़्तु बि घटि अथसि, कुझु ॾींहनि में हमिलो करे सघूं था। अमरीकी सदर ट्रम्प चयो आहे त सूमर वारे ॾियारे ते जंग शुरू करण में सिर्फ़ कलाक बचियो हो, ईरान जंग तेज़ीअ सां ख़तम करे छॾींदासीं।
0: जंग में वापसी जी सूरत में अमेरिका खे घणा सरप्राइज़ मिलंदा। जंग में जेको सिखियो आहे उन जी मदद सां वधीक हैरत अंगेज़ रद्द अमल ॾींदासीं। ईरानी परे वज़ीर अब्बास इराक़ीअ जो रद्द अमल। ईरानी नायब परे वज़ीर काज़िम ग़रीब आबादी जो चवणु आहे त अमेरिका धमकीअ खे अमन जो मौको बणाए पेश करे रहियो आहे, असां कंहिं बि जारियत जो मुक़ाबलो करण जे लाइ तयार आहियूं।
1: अमरीकी नायब सदर हिकु तरफ़ ईरान सां ॻाल्हियूं में अगबराए जी दावा कई त ॿिए तरफ़ ईरान ते हमलनि जी धमकी ॾिनी। अमरीकी नायब सदर जुडे वेन चयो आहे त ईरान सां ॻाल्हियुनि में अहम अगभराई थी आहे। ईरान मुआहिदो किरण चाहे थो, ईरान खे एटमी हथियार रखण वारी शर्त सां हथ खणणो पवंदो। ईअं न थिए त ईरान ख़िलाफ़ जंग ॿीहर शुरू कंदासीं।
0: अमेरिकी सेनेट ईरान जी नाकाबंदी ऐं फ़ौज हटाइण जो ठहराउ मंज़ूर करे वरितो। परॾेही मीडिया मूजिबि ठहराउ 47 वोट्स जे मुक़ाबले में 50 वोट्स सां मंज़ूर थियो।

0: जंहिंजे सबबि अमेरिका समेत सॼी दुनिया जी मईशत खे वॾो झटको लॻो आहे। परॾेही मीडिया मूजिबि सेनेट बादशाहरा अमेरिकी ऐवान में पेश कयो वेंदो। हलंदड़ हफ़्ते ई वोटिंग जो इम्कान आहे ऐं इहो बि इम्कान ज़ाहिर कयो पियो वञे त ईरान जी नाकाबंदी ऐं फ़ौज हटाइण जो ठहराउ अमेरिकी ऐवान मां बि मंज़ूर कयो वेंदो।
1: वफ़ाक़ी हुकूमत ईद उल अज़हा लाइ टिनि ॾींहनि जी मोकल जो ऐलान करे छॾियो। वज़ीर आज़म जी मंज़ूरीअ सां काबीना डिवीज़न नोटिफिकेशन जारी कयो। 26, 27 ऐं 28 मई ते मोकल हूंदी।
0: आबपाशी खाते किरोड़ रुपया किथे खर्च कया। वाहन ऐं शाखनि जी हालत ख़राब। वधीक 1 अरब रुपियनि जी स्कीम बि तयार। लाड़काणो ऐं शिकारपुर ज़िलनि में आबपाशी खातो ग़ैर फ़ाल बणियल। शिकारपुर जी बेगाड़ी केनाल, सिंध केनाल, गोहर शाख, लुंडी शाख समेत ॿियनि शाखनि ऐं वाहन जी खोटाई न थियण समेत टुटल दरवाज़नि जी बि मरम्मत न थी। आबपाशी खाते लाड़काणो में मोरा लूप बंद जे मथां पासे जी मरम्मत जे लाइ 1 अरब रुपियनि जी स्कीम जी मंज़ूरी ॾिनी। 2025 जी बोर्ड में मोरा लूप बंद बाबति आबपाशी खाते मॉडल स्टडी कराइण बदिरां सिर्फ़ तजवीज़ुनि जे बुनियाद ते 1 अरब रुपियनि जी स्कीम तयार कई हुई।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
5: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
6: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद ज़ियाउद्दीन शाह वल्दे हज़रत मौलाना सैयद हुसैन महाब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो। इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात फैलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हज़रात से कि इन लम्हात से फायदा उठाए।
7: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
8: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियल लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
7: खुशखबरी खुशखबरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अव्हां जे ॼातल सुञातल ऐवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
8: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने ऐं ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
7: जिते डॉक्टर आफ़ताब ऐवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
8: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
7: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
8: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
7: एड्रेस ऐवान मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशे औरतन जे
1: बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी

0: कई वजे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

आप सब वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो बिल्कुल जी आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं खूबसूरत होते जा रहे हैं खूबसूरती में और तो यहाँ पर आप लोगों को बता भी इतने ज्यादा प्यारे प्रोडक्ट्स के बारे में रही हूँ ताकि आप इस्तेमाल कर सके और अपने इस्तेमाल करने के बाद जो है ना हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को रिजल्ट्स किस तरह मिले हैं और किस तरह आप लोगों का फीडबैक है जनाब इन प्रोडक्ट्स को लेकर। तो यहाँ पर पहले मैंने आप लोगों को व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया ना, तो अभी आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोग जानते हैं कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए सिर्फ दो प्रोडक्ट है, जैसे कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और डी स्किन का फेस वॉश है। ये दो प्रोडक्ट्स अभी तैयार किए गए हैं। अगर आप मजीद जो है ना अच्छा वाला इन्हें प्यार दिखाते हैं अच्छे वाले प्रोडक्ट का जो है ना वो रिव्यू देते हैं अच्छी अच्छी आप प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल करके उन्हें बताते हैं तो ये मजीद प्रोडक्ट्स में जो है ना वो इजाफा करते जाएंगे। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट में आप लोगों के लिए चाहे आप फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो डी स्किन का फेस वॉश मौजूद है, अगर आप डी स्किन की ब्यूटी क्रीम लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल जी ब्यूटी क्रीम भी मौजूद है, अगर दोनों लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल जी दोनों लगाते जाइए। और साथ ही साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आपके लिए नंबर है जनाब 03 15 799 0595। ये नंबर आप लाजमी डायल कीजिए।

चाहिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए और आप इजीली वहां से जाकर परचेज कर सकें। तो जाइए, परचेज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, खूबसूरत हो जाइए, खूबसूरत रहिए, क्योंकि ये आपका हक है, आप डिजर्व करते हैं। तो अच्छे वाले प्रोडक्ट्स आप लोगों को पता होने चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट है जिनमें डी स्किन की ब्यूटी क्रीम है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये विटामिन ई बीट से तैयारशुदा है, 2 रातों में आप लोगों को रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है। जनाब क्या बात है, समझ रहे, 2 रातें बस आप इस्तेमाल करेंगे और आप लोगों को ना बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और उसके अलावा माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन से तैयारशुदा है, आपके चेहरे के डार्क सर्कल्स रिमूव हो जाएंगे, आपके चेहरे पर जो निशानात होते हैं वो खत्म हो जाएंगे, आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग हो जाएगी, ब्यूटीफुल हो जाएगी और आप ग्लो करते रहेंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि आप इजीली कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं, तो जाइए परचेज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए। साथ में अगर आप डी स्किन का फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो वो भी लगाइए जनाब, वो भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का फेस वॉश। और अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हमें बताइए कि आपको रिजल्ट्स कैसे मिलते जा रहे हैं। ओके, सो मैंने आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल पूछा है कि आप मुझे बताएं कि क्या आप भी क्या कभी बिला वजह जो है ना वो तैयार हो जाते हैं, या फिर आप ऐसे है कि तैयार होने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है कि नहीं भाई हाँ तैयार छो थे बला गड़ो जरूर। कुछ लोग तो ऐसे होते, मैंने देखे शादी ब्याह हो कोई इवेंट हो तब भी वो जो है ना वो कम तैयार होते हैं, और कुछ लोग बड़ी ऐसे होते हैं ना कि बस कुछ भी हो, कुछ हो ना हो, बस वो हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये अच्छी बात होती है, वैसे तैयार रहा करें, हमेशा ब्यूटीफुल रहा करें। और ये करूंगी लेकिन थोड़ी देर के बाद शेयर करूंगी। यहाँ पर जो है ना आज हम कॉल्स लेने वाले हैं, ठीक है, प्रोग्राम में। ओके, सो कॉलिंग वाला सेगमेंट हम जरा स्टार्ट कर लेते हैं। कॉलिंग नंबर हमारे 0332 1322 and 88, सो 0332 1322

0: हमें कॉल कर सकते हैं और उसके अलावा जो है ना हम बातें करेंगे. और अगर आप भी कॉल कर रहे हैं तो बिल्कुल आपकी कॉल हम पिक करते हैं. यहाँ पर फर्स्ट कॉल हमारे प्रोग्राम में है तो हम जरा पिक करेंगे और देखेंगे फर्स्ट कॉलर कौन हमारे साथ मौजूद है. जनाब हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम
0: सलाम. मौजूद
1: दुआ अथव
0: बुधी छो सब दुआ मुंजी अथव ये चवंदा न मानू कुल आई सो मुंजी दुआ अथव. अरे दुआ
1: जी
0: दे हाल अहिवाल केड़ो प्रोडक्ट लगाई थी कोन लगाई थी छा कयो तई?
1: हां लवली लवली थियो.
0: लवली वरती तई?
1: हां वठी आई आयो.
0: थोड़ा ये पार पता दे जे मके खबर पे त तू वाके लवली वठी आई आ.
1: हलो
0: ये न कर बाबा, ये न कर, ये न कर दुआ ॾिस. अच्छा टॉपिक ते दुआ छा चवंदी? हाणे टॉपिक इहो आहे त छा तव्हां कॾहिं ईअं बिना वजह तयार थींदा आहियो? कुझु माण्हुनि जो शौक़ हूंदा न बिना वजह ई बसि तयार थियण जो, वञू घर त बसि तयार लॻा वेठा हूंदा आहिनि ईअं. अच्छा पहिरियां थींदी हाणे न?
1: ईअं
0: छो? हाणे छो वॾा थी विया आहियूं ईअं चओ, हाणे वॾा थी विया आहियूं, अकुल अची वियो आहे. चलो दुआ कहिड़े दोस्तनि खे यादि कंदो आहे? दुश्मननि खे अॼु बि सलाम आहिनि बसि. चलो दुश्मननि खे सलाम दुआ जे तरफ़ां. सो थैंक यू सो मच दुआ, तव्हां असांजे प्रोग्राम में कॉल कई. ऐं तव्हां वाइट हेयर जी लवली क्रीम लॻायो था. नेक्स्ट टाइम तव्हां कॉल कई त तव्हां खां लाज़मी पुछंदमि बाबा निशानी ॿुधायो, ईअं असां यकीन कोन कंदा आहियूं. सम्झो था? सो कॉलिंग नंबर आहे 0333212138. नेक्स्ट कॉल वेठूं था, ॾिसूं था नेक्स्ट कॉलर कहिड़े सां गॾु मौजूदु आहे. हलो अस्सलाम वालेकुम. अॼु इहो कड़ा सिजो बिरियो आहे, कॉलियूं मायूं मायूं. ली नालो ॿुधाए पंहिंजो माई. अलाह नालो त ॿुधाए पंहिंजो. लेला लेला लेला ख़ुशा सदको वञाए कॾा ज़ाहिर थी आ. ख़ुशि लॻी पई आहे. अदी बि ख़ुशि आहे? ॿियो ॿुधाए प्रोग्राम ॿुधो पिया लेला? चलो मूंखे ॿुधाए टॉपिक ते लेला छा चवंदी? टॉपिक आहे बिना वजह तयार थियण जो शौक़ अथई या बसि ईअं?
1: अच्छा हा ॿुधो न, असांजी तयार लॻी पई सिर्फ़ असां न हूंदा, इन करे थी सघे असांखे जो न वठी वञनि त वरी मेणा मिलंदा न.
0: हा पोइ दिलि टुटी
1: पवंदी. दाना खाई खाई माना
0: ॿुध ॿुध लेला, घर जा दाना खाई खाई पोइ सिदराए शो में गाना ॿुधंदा आहियूं ईअं न? अच्छा लेला मूंखे ॿुधायो त तव्हां वाइट जा कोई प्रोडक्ट इस्तेमालु कया या डी स्किन जा कोई लॻाइण जो इरादो आहे या माना?
1: अच्छा इरादो आहे, हाणे ॿुधाइण ते आयमि. रमज़ान में तव्हां छॾियो आहे त वरी हाणे वापसि
0: ॿुधायो. चलो चलो तव्हांखे वापसी ते वेलकम चऊं था. कहिड़े दोस्तनि खे यादि कंदी लेला? सलाम ॾे मिड़े कंहिंखे या बसि बाए बाए कयूं हाणे?
1: सलाम तव्हांखे
0: चलो. थैंक यू सो मच लीला, असांजे प्रोग्राम में शामिल. लीला परी ॾाढी माशाल्लाह सुहिणी ऐं सुठी सबाजड़ी छोकिरी आहे. अन कयो पिया, कॉलिंग नंबर आहे 0333212138. कॾहिं कॾहिं मूंखे लॻंदो आहे शायदि मां नंबर ग़लति न ॿुधाए वञा, पर सदाई सही हूंदो.
2: वालेकुम
0: सलाम. केरु सां मौजूद आहे?
2: टॉपिक
0: ते तव्हां छा चवंदो?
2: टॉपिक ते इहो ई असां चवंदो की असां कॾहिं
0: चलो इहो बि ज़बरदस्त आहे. कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदे?
2: मिले कोन थी हिते, असां शहर असांखा काफ़ी परे आहे.
0: जी त पोइ तव्हां कहिड़ो जेको नंबर प्रोग्राम ॿुधाए थो हुन ते नंबर ते तव्हां राबितो कयो न त तव्हांजे ॻोठ में अवेलेबल कराए छॾनि. ॻाल्हि ई सवली
2: हाँ उन्हें नंबर दे रहा हूँ।

0: चलो
1: जबरदस्त
2: चलो ठीक है। थैंक यू सो मच फारूक भाई, तुम प्रोग्राम में कॉल कई मोहब्बत अवाजू प्रोग्राम बुधन आयो एतरी चा मोहब्बत से आसान सी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल भी करता आयो सो बिल्कुल जी कॉलिंग नंबर 0332132288 ही वाली कॉल दिसों ता खेरा सगर मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम, आज कैसे हो? ठीक हो?
2: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कौन भाई हमारे साथ?
3: प्रदीप कुमार में एक बार बात कर रहा हूँ, बाबू और घर पार करते
2: हैं। ओके प्यारे भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक।
3: आपकी नजरिया तो कट कट के आ रही है, मैं प्रकाश की।
2: हाँ बस नेटवर्क का थोड़ा इशू होगा ना, नेटवर्क हाने सही कितने भी न तो हले।
3: नेटवर्क सही कौन तो हले, बरकत
2: का। अज जो टॉपिक बुध आए,
3: अज जो टॉपिक विला जा प्यार ऐसा अभी कौन कयो?
2: तने मां सिंधी में ट्राई को ता से गलायो।
3: जी जी जी जी, आसा ने
2: बारे में
3: प्रोग्राम ता तमाम तो तमाम भलवा तकरीबन कुछ सालन का बुधो पर शामिल ही है सर।

0: मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: जी एफ एम 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफा पेश कयो वयो।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
5: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
3: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफा पेश कयो वयो।
6: खुशखबरी खुशखबरी साफ ए शिफा पानी सेहतमंद जिंदगी जी जमानत।
7: अवां जे पेंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल का खिदमत करे रहयो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओजिनेटेड यूरिफिटेड
6: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पानी जी बोतल
7: 6 लीटर पानी जी बोतल ए बियो पानी जो बोतलू मुतारिफ कराए रहयो आहे।
6: उनका अलावा असां वट रिफिल जी सहूलत पिण सस्ते अघते मौजूद आहे।
7: अवां जे एतमाद के कायम कंदे अवां जी जरूरत जो ख्याल रखदे।
6: ऑफिस हो जाए या घर या कारोबार शादी ए बिन तकरीबन लाए हाणी असां सां राबतो करियो। असां वट मातली शहर वासिल लाए होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाए मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
6: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पेंजे शहर मातली में अवां जे जातल सुनातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञन था। जे में
7: सीजर नॉर्मल डिलीवरी अंडे पिते मसाने बिया मुख्तलिफ़ किस्म जा ऑपरेशन कया वञन था। जे लाए मुख्तलिफ़ किस्म जा माहिर डॉक्टर ए सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा।
6: जिते डॉक्टर आफ्ताब एवान जनरल फिजिशियन रोजानो मंझंद 2 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
7: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
6: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वगे खां शाम 4 वगे ताईं। डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंद 12 वगे खां 1 वगे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदा।
7: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंद 2 वगे खां 3 वगे ताईं मरीजनि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
6: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक में औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

0: सीमा। सीमा तो प्रोग्राम में कॉल कही जी जी चलो थैंक यू सो मच थैंक यू। भाई सिदरा मुस्कान भी असो प्रोग्राम बुध भाई कॉलिंग नंबर आए 0332132288 नेक्स्ट कॉल हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम केड़ो भाषा से गड्डा नवाब शाह नवाब शाह का कॉल किया खुश आयो भा प्यारा माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आया प्रोग्राम बुध पा प्यारा भा टॉपिक चवण वाला आयो टॉपिक यो ताजे गोठ मा नथो मिले तो नंबर प्रोग्राम बुधा ते नंबर ते तव्हां कॉल करे वठो
1: नंबर ता मिले तो यो नंबर ते कॉल करे
0: वठो जी बिल्कुल बिल्कुल तव्हां कॉल त करे ॾिसो न चलो ठीक है तुझे गोठ में अवेलेबल कराना जो नंबर तक बुधा तो नंबर से तुम रात जरूर कजो एक दफा जी जी
1: अली अदर जमाली अली दोस्त जमाली अजी असा प्रोग्राम गची बुधो
0: ता थैंक यू तां भाईन जो मोहब्बत है नी ये मोहब्बत चा असा प्रोग्राम बुधन दा रहो आई तां प्राण भी लास भी लगा जो थैंक यू प्यारा भा खुश रहो ही सुकून बाबा सदाई खपे प्रोग्राम तां बुधो पया ई नेक्स्ट कॉल वठू ता दिसू ता नेक्स्ट कॉलर के जैसे सगड माचू ता हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
0: करा ल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जैसे सगड माचू ता
2: बस
0: एरम बस एरम शो बस एरम खेल लगो पा तू कुछ लगी पई अम्मा कुछ अम्मा अम्मा कुछ अच्छा एरम बुधा वया आयो मार्केट को चक्कर बकर आयो अव इधे शॉपिंग कई अव वी आया प्रोडक्ट जो बुधा थी शिकायत खी आया सर पवन कुमार वट न मिलो प्रोडक्ट चलो शिकायत गौर कर चलो ठीक है चवंदा सर पवन कुमार के बाबा रखो किरी में वठण वारा जके ना उता वटा वठी वेंदव
2: पवन कुमार
0: वन ना जै जी सिक हूंदी त वेंदा ॾिस तू पंद करे थी न साॻो चलो चलो एडम थैंक यू सो मच तव्हां प्रोग्राम में कॉल कई ॿियो छा चवंदी चलो थैंक यू सो मच बो बस मिनसा भी खुश
2: आड़ो
0: कड़ो बुधा हाँ सुबह हलाया भला हाँ तो टाइम खत्म थी चलो ठीक है थैंक यू सो मच मुझे प्यारी बसेरम तेहरबानी प्रोग्राम में बिल्कुल जी प्रोग्राम में हाने असा कॉलिन के थोड़ो स्टॉप लगायूं था छो तो बाकी वही पंज मिंट बचा असाने प्रोग्राम में सो ये असानी प्यारी इरम हुई वेचारी जो ढा पंद कन्दी आए जे प्रोडक्ट लगाना हूं अस वही वी जिता किता गोले सो बिल्कुल तमाम भी मोहब्बत कर बाबा पांच चेहरे से पानी स्किन जो ख्याल रखो वाइट एस जहा ब्यूटी प्रोडक्ट्स आज जी तुम इस्तेमाल कर सो डी स्किन जहा प्रोडक्ट आज जी तुम इस्तेमाल कर सो तवी खूबसूरती की बधाईंदा तवे प्यारो सोनो बनाईंदा तुम सब चिमक बदला तो कॉलिंग नंबर है जनाब कॉलिंग नंबर के जिनते तुम राबो कंदा वो नंबर है 0315799 0595 ही नंबर डायल कर करीबी जन स्टोर से भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल थी वन अच्छा किशोर भाई कहते कि दुआ खान धागो कराए दे बाकी के दुआ का वाके धागो कराए देणो पवंदो तव्हांखे तव्हांजी कॉल छो नथी लॻे।

अच्छा मुनव्वर मोलाई जो इमरान भा गानो चयो हो मरां तकेला है मरां बिल्कुल बिल्कुल यो गानो ताजो हलाईंदासीं पर ॾिसूं कॾहिं था हलायो और दारावन से डॉक्टर राम फकीर हमारे साथ है जे एम जोगी फकीर हाय सिद्रा डियर आप कैसी हैं प्लीज प्ले आबिदा परवीन जी ओके मैं कोशिश करूंगी कि आपकी फरमाइश भी लगाएंगे बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद है और उसके अलावा नेमतुल्ला जतोई है नवाब जतोई है बहुत शुक्रिया जी बोथ ऑफ यू

हाय हाय इरशाद अहमद शाह हमारे साथ मौजूद है. वालेकुम अस्सलाम. न्यू दिल्ली से हमारे शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी. अली अकबर ब्रोही भाई हमारे साथ मौजूद है सकरण से, आप हमारे साथ मौजूद.

हिदायत अल्लाह कहते हैं सदरा तो खा सवा किसी और का प्रोग्राम अच्छा नहीं लगता। ऐसा मत बोले, बहुत से लोग ऑफेंड हो जाते हैं। और ये आदिल हुसैन कहते हैं प्रोग्राम सफा भल्लो आहे। बिल्कुल जी, प्रोग्राम तो भल्लो आए, पर जड़ी तवा ही प्रोडक्ट जगह बुधाए नी प्रोग्राम में वो इस्तेमाल करना तो पोए तवा भी दादा भल्ला थी वेना। सो ही प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो जी, सुन सुन सफा सुन थी वनो। आई उन का अलावा असानी पोस्ट के लाइक शेयर कयो जिन अन्या तरी कोन कयो आहे। अनवर भा बिल्कुल हाने मोकलाने जो वक्त सफा करीब अची चुको आहे। ओ इते सामू अजे बीठो आहे। सो हाने बिल्कुल तवा खा इजाजत वठनासी, वरी इंशाल्लाह तवा से मुलाकात मुजी सुभाणी वाली प्रोग्राम में थेण वाली आहे। 1 बजे का 3 बजे ते तवा जो संजो साथ हूं जॉइन कना बुध न विसारी ना। आई किते का गलती थी उजे तमा माजरत कया भाई सैया। सो मोकलानी नाए बाबू सिन सलामत सलामत अल्लाह हाफिज़ बाय बाय लव यू ऑल।

0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
3: कुझु वक़्त बि घटि अथसि ऐं कुझु ॾींहं में हमिलो करे सघूं था. थी सघे थो जुमे या छंछर ते ईरान मथां हमिलो करे छॾियूं. अमरीकी सदर ट्रम्प चयो आहे त सूमर वारे ॾिहाड़े ते जंग शुरू करण में सिर्फ़ कलाक बचो हो. सऊदी, कतर ऐं यूएई ऐं ॿिनि मुल्कनि जी दरख़्वास्त ते हमिलो मुलतवी कयो. जंग में वापसी जी सूरत में अमरीका खे घणा सरप्राइज मिलंदा. जंग में कुझु सिखियो आहे, हुन जी मदद सां वधीक हैरत अंगेज़ रदअमल ॾींदासीं. ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास राख़्ती जो रदअमल. ईरानी नायब परडेही वज़ीर अवकाज़म गरीबाबाद जो चवण आहे त अमरीका धमकी खे अमन जो मौको बणाए पेश करे रहियो आहे. असां कंहिं बि जारियत जो मुक़ाबलो करण लाइ तयार आहियूं. विच ओभर जी सूरतहाल अहम मोड़ ते आहे. छिकताण जी ॿीहर शुरूआत कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे. चीनी सदर

ईद उलज़ा ते टिनि ॾींहनि जी मोकल जो ऐलान 26, 27, 28 मई ते मोकल हूंदी। वज़ीर आज़म जी मंज़ूरीअ सां काबीना डिवीज़न नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो।

अपाचिका ते किरोड़ रुपया किथे खर्च कया। वाहन ए शाखन की हालत बदस्तूर खराब। गैर फाल बनल अपाची खाते ला 1 अरब रुपये की स्कीम मंजूर। शिकारपुर की बेगारी कैनाल, सिंध कैनाल, गोहर शाख, लैंडी शाख समेत बिन शाखन ए वाहन की न खोटाई थी। नई वरी टुटल दरवाजन की मरम्मत थी सकी। लाड़काने में मोरिया लूपबंद की मथाई पासे की मरम्मत ला 1 अरब रुपये की स्कीम भी मंजूर। 2025 के बोर्ड में मोरिया लूपबंद बाबत अपाची खाते मॉडल स्टडी कराने बदर सिर्फ तजवीजों की बुनियाद 1 अरब रुपये की स्कीम तैयार कई।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
2: ताडो सुठो
1: GAFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
4: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार।
5: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से

0: तक मिनटों में पहुंचता है।
1: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
4: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, अंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
3: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
4: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
3: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
4: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
3: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 2347-3141-230 केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 03132525786
1: जी हा 2315525786
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

की सफाई की। जैसे ही सब घर वाले जाके सबके लिए नाश्ता बनाया, नाश्ता करवाकर बर्तन धोए, इतने में मेहमान आ गए, मेहमानों को चाय पानी पिलाकर किचन में आ गई। मटन का कोरमा बनाने में तकरीबन 2 घंटे लग गए। इसके बाद बिरयानी का सामान तैयार करने लगी। शौहर साहब किचन में आए, पानी पिया और चले गए। मैंने सोचा पता नहीं कौन सी औरतें होती हैं जिनके शौहर काम में मददगार होते हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, वैसे भी ये औरतों का ही काम है। फ्रिज बना बिरयानी बनाकर फ्रिज से कबाब का आमेजा निकाला, कबाब की शेप देकर उनको फ्राई करके रखा। रात की नींद दिन भर की थकन ने कमर को तख्ता कर दिया था। दिल चाह रहा था ढेर सारा सो जाऊं मगर फिलहाल मुमकिन ना था। कबाब फ्राई करके सलाद काटा, टेबल पर खाना लगाया। कितना कुछ एक दिन पहले से तैयार करके रखा था, फिर भी खाना बनाने में 2 बज गए। खाना टेबल पर लगाकर जैसे ही सब बच्चों और जो है सबको खाने के लिए बुलाया तो बच्चों ने टेबल पर बैठते ही शोर कर दिया कि हम तो खाना नहीं खाते, हमने पास्ता खाना है। नन भी कंधे उचकाकर मुस्कुराई, कहने लगी बच्चे घर में ज्यादातर खाना नहीं खाते, पास्ता ही खाते हैं। अगर तुम बना नहीं सकती ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। मैंने शोर की जानिब देखा, वहां बेनियाजी थी। सास ने भी कोई हौसला नहीं बढ़ा, मैं दोबारा किचन में चली गई। नए सिरे से सब कुछ काट छांट कर पास्ता बनाने लगी। भूख थकन से बुरा हाल था। नन का सबसे छोटा बेटा रोने लगा, मुझे चिप्स खानी है। पास्ता बनाते हुए आलू काटकर उसके लिए चिप्स बनाई और जब मैं किचन से बाहर आई तो सब खाना खा चुके थे। मुझे धचका सा लगा, किसी ने अजराए मुरव्वत भी मुझे खाने के लिए नहीं कहा। ऐसा लगा जैसे अम्मी और आपी का मूड बहुत खराब है। मैंने मुस्कुराकर पूछने की कोशिश की खाना कैसा बना और सिवाय मेरे शोर के किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। खाना खाते मेहमान रुखसत हो गए, मैं भी टेबल पर बैठ गई कुछ खा लूं। जैसे ही पहले लुकमे की तरफ हाथ बढ़ाया अम्मी की आवाज आई, अगर तुम नहीं चाहती कि मेरी बेटी इस घर में आए या तुम उसकी खिदमत करो तो तुम हमें साफ साफ बता दो। मैं हैरान थी कि आखिर हुआ क्या, क्या कमी रह गई। वालदा कहने लगी कि तुम्हें कल बताया भी था कि तुम्हारी नन के शोहर जो है वो धनिये की चटनी के बगैर खाना नहीं खाते, मगर तुमने जिद में आके इसके लिए चटनी नहीं बनाई। मैं हक्का बक्का उन्हें देखती रही और मैं इतना भी नहीं कह सकी कि वो चटनी फ्रिज में रखी थी, मैं बस टेबल पर रखना भूल गई। वो दोनों चले गए मगर मैं टेबल पर तन्हा बैठी रह गई। ढेर सारा जब्त करने के बावजूद आंखों से आंसू मेरे चेहरे पर लड़कता हुआ गिरा, दुपट्टे में जज्ब हो गया। एक बहू की कहानी मेरी जबानी, माशरे की एक तल्ख हकीकत जहां बहू को औरत नहीं बल्कि एक लोहे की इंसान समझा जाता है, जिसे न तकलीफ होती है न भूख लगती है, सिर्फ एक गुलाम समझा जाता है, जिसे निकाह के बंधन में बांधकर हमेशा के लिए उसके माथे पर मोहर लगाकर उसकी जिंदगी को खरीद लिया जाता है, बात बात पे जलील किया जाता है। और अगर वो अपने हक के लिए आवाज उठाए, जबान दराज और बत

बेटी नहीं बन सकती। यही है मेरा आप सबसे सवाल और यही है हमारे आज के प्रोग्राम का टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम इन अवर शो एज यूजुअल जी अमीर प्रकाश FM 88 के लाइव स्टूडियो से आरजे गुलनाज आपके साथ साथ। प्रोग्राम ऑन ईयर है सब दोस्त हमारे और प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही आप तमाम लिसनर्स के लिए इतनी खूबसूरत सी दुआ है, दिल चाहता है बार बार ये दुआ आपको दूं। अल्लाह ताला आपको उतना अता फरमाए जितनी उसकी शान है, उतनी खताएं माफ फरमाए जितना वो रहमान है, और आजमाइशों से वो आपको इतना महफूज रखे जितना वो मेहरबान है। आमीन। अरे बहुत ही गौर तलब टॉपिक है, सोच समझ के आपने रिप्लाई देना है। अगर टॉपिक पे आप बात नहीं कर पाते या बात नहीं कर पाएंगे, आपके लिए डिफिकल्ट है, तो आप खामोशी से प्रोग्राम सुनिएगा, उन लोगों को मौका दीजिएगा जो एबल है टॉपिक पे बात करने के लिए। आपने सीरियसली आज इस टॉपिक को फॉलो करना है, मुझे बताना है क्या एक बहू बेटी नहीं बन सकती। यही है आज का टॉपिक। और टॉपिक के हवाले से अपने दिल की बात हमें बताने के लिए मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में आपने लिखना है MP के एक स्पेस देना है, नाम और पैगाम लिखकर रवाना करना है 8881 पर। लाइव कॉल के लिए डायल करना है 03136615688।

0: के हो तो आवाज
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: खुशखबरी खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत कर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिक
4: पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिणु सस्ते अघ मौजूद आहे।
5: अवांजे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे।
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
4: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
5: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
4: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
5: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
4: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरोसर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
5: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरोफिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
4: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियन रत जो घट थियन कमजोरी आई औरतन ए बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आ आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-32-41-230
2: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻण लाइ खुश खबरी छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 030029624 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: रखने पर भी जीत सकते हो। जगह रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जियाउद्दीन शाह, वल्दे हजरत मौलाना सैयद हुसैन मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो, इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात फैलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हजरात से कि इन लम्हात से फ़ायदा उठाए।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ जी

0: आपके SMS हमने शामली प्रोग्राम की SMS करने का तरीका अगेन रिपीट करती चलू। मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में MP के लिखना है, एक स्पेस देना है, नाम और पैगाम लिखकर रवाना करना है। 8881 पर लाइव कॉल के लिए डायल करना है 03133661568। कुछ कॉल शामली प्रोग्राम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अदा वेलकम कहते हैं। टॉपिक के बारे में क्या राय है आपकी? फिर मैं क्या करूं, मैं भी आ जाऊं वहां जानवरों के वहां?
1: ना बहन से चला का है थी वो कपड़ा था तो बहन की सिक कोई उनके घर एक भी लगा है आज प्रोग्राम बुदो के को हवा लगे कोई
0: ध्यान करना कोई बकरा आपको लात ना दे मारे। आप मुझे टॉपिक के बारे में बताएं क्या कहेंगे?
1: अल्लाह अल्लाह खैर कर लो ठीक है बहन
0: चले ठीक। जानवर दीगर मवेशी मौजूद है उनसे हाय हेलो करें और अदर लिसनर्स को मौका दें शामले प्रोग्राम होने का। अस्सलाम
2: वालेकुम
0: जनाब, वेलकम कहते हैं, कौन बात कर रहा है? आपने हमें फोन किया था, क्या हाल है आपके?
2: बिल्कुल शुक्रिया भाजी, ठीक ठाक। आप सुनाए भाजी, आप कैसे?
0: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से? ये ख्याल पक्का हो गया है हमारे दिमागों में कि हम बहू को बेटी का दर्जा नहीं दे सकते चाहे कुछ भी हो जाए।
2: बिल्कुल बिल्कुल
0: चले ठीक हो गया था। बहुत शुक्रिया आप शामले प्रोग्राम हुए।
2: थैंक यू सब दोस्तों को सलाम भाजी।
0: ठीक है जनाब, सबकी जानिब से वालेकुम अस्सलाम, ढेरों सलामती आपके लिए। तमाम सुनने वाले सलामत रहें, आबाद रहें। क्या बहू बेटी नहीं बन सकती ये जानने के लिए नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम
0: जनाब, वेलकम कहते हैं, कौन बात कर रहा है?
3: जी
0: जनाब आप बताइए, फीमेल आई है कॉलर तो उनसे पूछेंगे क्या बहू टॉपिक के बारे में आपका क्या कहना है? सवाल पूछा है, फिलहाल बहू को डिस्कस कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है? बहू के जो डिफरेंसेस है, फिर सास के हवाले से नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में ऐसा इंटरेस्टिंग सा हम टॉपिक रखेंगे। अगर हम दोनों पहलू डिस्कस करने लगेंगे तो किसी ख्वातिर ख्वा नतीजे पे आज नहीं पहुंच पाएंगे।
3: वैसे की स्टोरी ये होती है कि जब सास अच्छी होती है तो बहू अच्छी होती है
0: तो सास। ये दोनों साइडेड से अगर कोशिश हो तो शायद ऐसा हो जाए।
3: हाँ
0: सही चले ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप शामले प्रोग्राम हुई, थैंक यू सो मच। ओके जी अल्लाह हाफिज। और सब लोगों की डिफरेंट राय है। अच्छा हमारे इर्द गिर्द हम जो इंसान जो है वो माशरती हैवान है, उसके आसपास बहुत से लोग रहते हैं तो डिफरेंट लोगों के साथ उसके डिफरेंट तजुर्बात होते हैं। तो जो

जंग में वापसी की सूरत में अमेरिका के घना सरप्राइज मिलंदा। जंग में जो सीखो है उनकी मदद से हैरत अंगेज रद्द अमल दींदी। ईरानी परदे वजीर अब्बास इराकी जो रद्द अमल। ईरानी नायब परदे वजीर काजिम गरीब आबादी जो चवण है अमेरिका धमकी के अमन जो मौको बनाए पेश कर रो है। अस कें भी जारहियत जो मुकाबलो करण के लिए तैयार आय। अमेरिकी नायब सदर की एक तरफ ईरान से गाल में अगभराई की दावा तो बे तरफ ईरान से अमेरिकी नायब सदर जे डी वेंस ईरान से गाल में अहम अगभराई थी है। ईरान वायदो करण चाहे तो ईरान के एटम हथियार रखने वाले शर्त ता हथ खड़ो पव ये न थो जंग बीहर शुरू कंदी। अमेरिकी सेनेट ईरान की नाकाबंदी खत्म करण फौज हटाने जो ठहराव मंजूर कर वरतो। पर मीडिया मुजिब ठहराव 47 वोट्स के मुकाबले में 50 वोट्स से मंजूर थो। जंग सबब अमेरिका समेत सारी दुनिया की मईशत के वो झटको लगो है। पर मीडिया मुजिब सेनेट बाद ठहराव अमेरिकी अवान में पेश किया वो हलंदड़ हफ्ते ही वोटिंग जो इम्कान है। यो भी इम्कान जाहिर किया वे तो ईरान की नाकाबंदी फौज हटाने जो ठहराव अमेरिकी अवान मां भी मंजूर किया वो।

मंशिया डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के प्रोटोकॉल ॾियण वारे मामले जी जांच मुकमल। SSP सिटी अली हसन, SHO गार्डन ऐं SIO ज़िमेवार करार। रिपोर्ट में ॼाणायो वियो आहे त SHO गार्डन हनीफ सियाल SSP सिटी जी हिदायतुनि ते पिंकी खे पुलिस प्रोटोकॉल ॾिनो। पिंकी खे थाणे में खाधो, मेकअप, कपड़ा ऐं दवा

फराम कयूं। बिनकी जी गिरफ्तारी खां अदालती पेशीअ ताईं SSP इन्वेस्टिगेशन सिटी ऐं DIG ॾखण खे अणॼाण रखियो वियो। पिनकी थाणे ते मौजूदगी दौरान नशे जी हालत में हुई। पिनके खे SHO पंहिंजे ऑफिस में ख़ासि महिमान जीअं विहारियो। ॿिन्ही में पैसनि जी ॾेती रेती बाबति बि ॻाल्हियूं थियूं। उन मामले जी वधीक जांच थियणु घुर्जे। ईद अल अज़हा ते 3 ॾींहं मोकल जो ऐलान। 26, 27, 28 मई ते मोकल हूंदी। वज़ीर आज़म जी मंज़ूरीअ सां काबीना डिवीज़न नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो।

आबाशी खाते किरोड़ रुपया किथे खर्च कया। वाहन शाखन की हालत बदस्तूर खराब। गैर फाल बनल आबाशी खाते के लिए 1 अरब रुपये की वधिक स्कीम मंजूर। शिकारपुर की बेगारी केनाल सिंध केनाल गोहर शाख लुंडी शाख समेत बेन शाखन वाहन की न खोटाई थी ए नई वरी टुटल दरवाजन की मरम्मत थी सकी। लाड़काणो में मोरिया लूप बंद के मथे पास की मरम्मत के लिए 1 अरब रुपये की स्कीम भी मंजूर। 2025 की बोर्ड में मोरिया लूप बंद बाबत आबाशी खाते मॉडल स्टडी कराने बदला सिर्फ तजवीजन के बुनियाद से 1 अरब रुपये की स्कीम तैयार कई। करोड़ रुपये की करप्शन जो इंकशाफ। खुराक खाते के इख्तियार 10 करोड़ 34 लख रुपये की कणक की रकम में खुर्दबुद वे मामले की जांच का हुक्म दे छोड़ो। इख्तियार मूजिब थरपारकर के फ्लोर मिल से चकी मालिकन खुर्दबुद की शिकायत कई हुई। दरख्वास्त गुजार इल्जाम है तो साल 2024 में खुराक खाते के ऑफिसर एहलकार गठजोड़ कर 10 करोड़ रुपये की करप्शन कई। फ्लोर मिल से चकी मालिकन के नाले से कूड़ा बैंक चालान जाहिर कर करप्शन कई वही। खुराक खाते वीरपुर खास के डिप्टी डायरेक्टर के समूरे मामले की जांच कर 1 ॾींहं में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फरायन सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
4: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीत के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, 7 स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
7: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश 100 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
7: अवां जे एतमाद खे कायम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
6: खुशखबरी खुशखबरी।

0: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
1: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, अंडे, पिथे, मसाने ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
0: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा, गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
1: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
0: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
1: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
0: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347321 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 03125257 86।
1: जी हा 2315525786
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

0: It's 4:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: Har din, har peher, zindagi ki leher, GFM 88 Network, Sindh ki awaaz.
4: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो. बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें. 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है. अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तो भाई साहब क्या समझे.
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का.
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है.
3: सुनते रहो GFM 90.4.

0: हर पहर जिंदगी की।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
0: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज,
0: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: सामीन और नाजरीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन हैं। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप ज़रूर पिलाइएगा।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो, हर दिन का शो।
4: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
6: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
7: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
6: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
7: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
6: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
7: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
6: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
2: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 03125252786।
2: जी हा 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है। दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार।
1: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजे गए रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

करे सघूं था थी सगे तो जुमे या छंछर ते ईरान मता हमलो करे छू। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त सूमर वारे दिहाड़े ते जंग शुरू करण में सिर्फ कलाक बचो हो। सऊदी, कतर, यूएई ए बियन मुल्कन की दरख्वास्त हमलो मुलतवी किया।

जंग में वापसी जी सूरत में अमेरिका के घणा सरप्राइज मिलंदा। जंग में जेको सिखियो आहे उन जी मदद सां वधीक हैरत गैस रदे अमल ॾींदासीं। ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास इराकची जो रदे अमल। ईरानी नायब परडेही वज़ीर काज़िम गरीबाबादी जो चवण आहे त अमेरिका धमकी खे अमन जो मौक़ो बणाए पेश करे रहियो आहे। असां कंहिं बि जारीअ जो मुक़ाबलो करण लाइ तयार आहियूं।

50 वोटनि सां मंज़ूर थियो। समेत जी मैशियत खे वॾो झटको लॻो आहे। परॾेही मीडिया मूजिबि सेनेट बाद ठहराउ अमरीकी ईवान में पेश कयो वेंदो। हलंदड़ हफ़्ते ई वोटिंग जो इम्कान आहे ऐं इहो बि इम्कान ज़ाहिर कयो पियो वञे त ईरान जी नाकाबंदी ऐं फ़ौज हटाइण जो ठहराउ अमरीकी ईवान मां बि मंज़ूर कयो वेंदो।

0: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीत के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेज और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलत पिणु सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
4: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
4: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूदु हूंदा,
3: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
4: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
3: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
4: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
3: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर, नज़द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
2: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
2: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 03125252786
2: जी हा 2315-2575-786
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाव पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
4: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां खिदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओजिनेटेड यूरिफिटेड,
3: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असांजी सहूलियत पिण सस्ते अघ मौजूद आहे।
4: अवांजे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713023920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
4: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
3: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
4: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
3: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
4: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
3: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
2: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
4: सुनते रहो GFM 90.4

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जियाउद्दीन शाह, वल्द हजरत मौलाना सैयद हुसैन मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो, इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात पिलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हजरात से कि इन लम्हात से फायदा उठाए।
2: अम्मा, ए दिसो मके छा मिलियो
3: पुत्र।

0: हिकु ॾींहुं हिन छोकिरे जूं जासूसी माराईंदियूं असांखे
1: असांजो पाणी साफ़ न आहे तंहिंजे करे त असां बीमार था अचूं असांखे पाणी ऐं सफ़ाई ॿिन्हिनि जो ख़्यालु रखणु घुर्जे
0: केॾो सियाणो पुटु आहे मुंहिंजो
1: बाबा इहो ई जासूस तव्हांखे बचाईंदो
2: साफ़ पाणी महफ़ूज़ ज़िंदगी दस्तनि खां बचाओ ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो
3: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
4: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे
5: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
6: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर माथली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
6: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
6: खुशखबरी खुशखबरी अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अव्हां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था जंहिं में
7: सीज़र नॉर्मल डिलीवरी आंडे पिथे मसाने ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा
6: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
7: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
6: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
7: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद
6: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली

0: बुलेटिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अवां जे पंहिंजे शहर माटली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
1: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
2: सीज़र नॉर्मल डिलीवरी अंडे पिथे मसाने ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
1: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
2: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
1: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
2: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
1: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: सामीन और नाजरीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन हैं। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप जरूर पिलाइएगा।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण और तुंजे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाय 2347-3141-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लगण लाइ खुशखबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लगरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लगराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
6: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राबितो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713800392।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
1: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
2: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
1: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
2: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
1: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
2: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
1: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर नज़द नोतकारी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230 केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश खबरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

ईरान अमेरिका जी वेड़ के रोकण जरूरी है। एक तरफी गुंडागर्दी है तारीख तब्दील करण वारन कदम की मुखालफत करनी पवी। चीनी सदर शी जिनपिंग रूसी सदर प्यूटन विच में मुलाकात दौरान इतफाक। बीजिंग में रूसी सदर से मुलाकात दौरान चीनी सदर गलंदे विच ओभर की सूरतहाल अहम मोड़ से है। छिकताण की बीहर शुरुआत कें भी सूरत में कबूल न है। मौजूदा हालत में गाल वही अहमियत रखन थी। पीटन आलमी सतह से इस्तकाम बरकरार रखने लाए चीन ए रूस जो किरदार अहम है। चीनी ए रूसी सदर विच में मुलाकात दौरान बिन्हीं मुल्क विच में स्ट्रेटेजिक सहकार की गडियल पधराई से सही भी कई व्य। वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी एक भेरों बीहर ओचितो तेहरान पहुंची वो। ईरानी हमन सब इस्कंदर मोमनी आईआरजेसी जे सरबराह जनरल अहमद वहीदी से अहम मुलाकात। मोहसिन नकवी कुछ डी अग भी तेहरान पहुंची। ईरानी सदर मसूद पशकियान परेई वजीर अब्बास इराकची बेन ईरानी इख्तियार से मुलाकात क्यों हुई। ईरान के हाने वडो लोडो इंदो वक्त भी घट अस कुछ दिन में हमलो करे सकूं था। थी सके तो जुम्मे या छंछर ते ईरान वता हमलो करे छड्यूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त सूमर वारे दिहाड़े ते जंग शुरू करण में सिर्फ सऊदी कतर यूएई ए बेन मुल्कन की दरख्वास्त ते हमलो मुलतवी कयो। जंग में वापसी की सूरत में अमेरिका के घना सरप्राइज मिलंदा। जंग में जो सीखो है उन मदद से हैरत अंगेज रद्द अमल डींदी। ईरानी परदेही वजीर अब्बास राखची जो रद्द अमल। ईरानी नायब परदेही वजीर काजिम गरीब आबादी जो चवण है त अमेरिका धमकी के अमन जो मौको बनाए पेश कर रो है। असा कें भी जारियत जो मुकाबलो करण लाय तैयार आयूं।

अमरीकी नायब सदर जी एक तरफ ईरान से गालियन वकबराई की दावा तो बे तरफ ईरान से हमलन की धमकी। अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस ईरान से गालियन में अहम अकबराई थी है। ईरान वायदो करना चाहे तो ईरान के एटमी हथियार रखने वाली शर्त हथ खणो पवन इं न थो तो जंग बीहर शुरू कंदी। अमरीकी सेनेट ईरान की नाकाबंदी खत्म करण ए फौज हटाने जो ठहराव मंजूर कर वरतो। परे मीडिया मुजिब ठहराव 47 वोटन के मुकाबले में 50 वोटन से मंजूर थो। जंग सबब अमरीका समेत सजी दुनिया की मईशत के वो झटको लगो है। परे मीडिया मुजिब सेनेट बाद ठहराव अमरीकी ऐवान में पेश कर वो हलदड़ हफ्ते ही वोटिंग जो इम्कान है। यो भी इम्कान जाहिर किया पे वे तो ईरान की नाकाबंदी ए फौज हटाने जो ठहराव अमरीकी ईवान में भी मंजूर कर वो। मनशिया डीलर पिंकी के मामले में एडिशनल आईजी कराची ए टंडे मस्ती में नारी खालदा उर्फ रुबीना चांडियो के कतल मामले में डीआईजी सकर सेनेट के घरू मामल बाबत स्टैंडिंग कमेटी आडो पेश। कराची पुलिस चीफ आजाद खान मूजिब मनशिया डीलर पिंकी खिलाफ 2021 का 26 21 केस दाखिल थे। गिरफ्तारी दौरान पिंकी के घर में कुकेन भी हथ आई। पिंकी के 16 बैंक अकाउंट जो पतो लगाया। एक अकाउंट में 90 लाख रूपया मिलिया। डीआईजी सकर नासिर आफ्ताब कमेटी के ब्रीफिंग डींदे नारी खालदा उर्फ रुबीना चांडो के कत्ल केस में 10 जवाबदार गिरफ्तार कया। नारी पसंद पड़ने लाए घर निकरी वही हुई जैखा केस वापस कराए जिरगे में कत्ल की फतवा जारी कई वही। केस में अहम कलम शामिल कर

विया आहिनि, जवाबदार ससा खां नथा बची सघनि। मलेशिया डीलर अनमोल उर्फ पिंकी खे प्रोटोकॉल ॾियण वारे मामले जी जांच मुकमल। SSP सिटी अली हसन, SHO गार्डन ऐं SIO ज़िमेवार करार। रिपोर्ट में ॼाणायो वियो आहे त SHO गार्डन हरीफ सियाल SSP सिटी जी हिदायतनि ते पिंकी खे पुलिस प्रोटोकॉल ॾिनो। पिंकी खे थाणे में खाधो, मेकअप, कपड़ा ऐं दवाऊं फराहम कयूं। पिंकी जी गिरफ़्तारीअ खां अदालती पेशी ताईं SSP इन्वेस्टिगेशन सिटी ऐं DIG दखण खे अणॼाण रखियो वियो। पिंकी थाणे ते मौजूदगी दौरान नशे जी हालत में हुई। पिंकी खे SHO पंहिंजे ऑफिस में ख़ासि महिमान जीअं विहारियो। ॿिन्ही में पैसनि जी ॾेती लेती बाबति बि ॻाल्हियूं थियूं। इन मामले जी वधीक जांच थियण घुर्जे। ईद उल अज़हा ते 3 ॾींहं मोकल जो ऐलान। 26, 27, 28 मई ते मोकल हूंदी। वज़ीर आज़म जी मंज़ूरी सां काबीना डिवीजन नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 03125257-86।
1: जी हा 2315-25-786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।
3: It's 6:15 p.m.
4: This time check is brought to you by
5: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
6: Sindh ka har chappa har gosha
7: GAFM 88 network se juda
6: GAFM 88 network Sindh ki aawaz।
8: Hello Varna, ख़बर न आहे मां हर वक़्तु एॾी थकियल थकियल छो हूंदी आहियां।
9: तूं खाईंदी छा आहे? स्कूल में बाक़ी ॿारनि जी मंझंदि जी मानी ॾिठी आहे।
10: सोचो ज़रा तुम थके हो क्यों?

0: किचन है तो तवन के रोज अंडा खारा जो मंझन जी मानी में सूफ दी जो तो जियो स्कूल में मुआगुर थकिलो तो चला ना हो जे
1: बारन में कमजोरी अक्सर जरूरी गिजाई जुजन जी घटताई हुंदी आहे जेका उनन जे सिखण जी सलाहियत में रंडक बणजे थी। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफा पेश कयो वयो।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
1: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
1: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
2: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
1: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिजिशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी,
2: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब,
1: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
2: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
1: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
2: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

0: जॾहिं ॿिए ॿार जे सोचण जो वक़्तु अचे त ॿ साल तूं सोचजांइ, बसि इहा ॻाल्हि कमु ईंदी।
1: जॾहिं नई माउ बणजण जो डपु हुजे त कंहिं पुराणीअ जी ॻाल्हि ॿुधो। हमल जे दौरान रत जी घटिताई खे बि नज़रअंदाज़ न करियो। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
2: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
3: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
2: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
3: ऐं गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
2: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंद 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
3: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंद 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
2: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाड़ी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाए 2347-3141-230 केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4

0: आप सुन रहे हैं TFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी खुशखबरी साफ ए शिफाफ पानी सेहतमंद जिंदगी की जमानत
2: अवाजे पेंजे शहर माथली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल का खिदमत करे रहयो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओजिनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पानी की बोतल
2: 6 लीटर पानी की बोतल ब्यू पानी जो बोतलू मुतारिफ कराए रहयो आहे।
1: उनका अलावा असा वट रिफिल की सहूलत पिण सस्ते अगते मौजूद आहे।
2: अवां जे इत्माद के कायम कंदे अवां जी जरूरत जो ख्याल रखदे
1: ऑफिस हो जाए या घर या कारोबार शादी ऐं बिन तकरीबन लाए हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वट मातली शहर वासिल लाए होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाए मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
1: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पेंजे शहर मातली में अवां जे जातल सुन्यातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञन था जंहिंमें
2: सीज़र नॉर्मल डिलीवरी अंडे पिथे मसाने बिया मुख़्तलिफ़ किस्म जा ऑपरेशन कया वञन था जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ किस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा
1: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंद 2 वॻे खां रात 8 वॻे ताईं मरीज़न जो मुआइनो कंदा। गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
2: ऐं गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
1: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंद 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
2: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंद 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
1: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
2: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वते मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सैयद जियाउद्दीन शाह वल्दे हजरत मौलाना सैयद हुसैन मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो, इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात पिलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हजरात से कि इन लम्हात से फायदा उठाए।
3: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाव पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
4: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, एतमाद जो नालो।

0: मिनरल वाटर ओजिनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पानी की बोतल
0: 6 लीटर पानी की बोतल ए बियो पानी जो बोतलू मुतारिफ कराए रयो आहे
1: उनका अलावा असा वट रिफिल जी सहूलत पिन सस्ते अगते मौजूद आहे
0: अवा जे इत्माद के कायम कंदे अवा जी जरूरत जो ख्याल रखदे
1: ऑफिस हो जाए या घर या कारोबार शादी ए बिन तकरीबन लाए हाणी असा सा राबतो करयो असा वट मातली शहर वासिल लाए होम डिलीवरी सर्विस पर मौजूद आहे वधिक मालूमात लाए मोबाइल नंबर 03718003920
0: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
1: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पेंजे शहर मातली में अवां जे जातल सुन्यातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञन था जे में
0: सीजर नॉर्मल डिलीवरी अंडे पिते मसाने बिया मुख्तलिफ़ किस्म जा ऑपरेशन कया वञन था जे लाए मुख्तलिफ़ किस्म जा माहिर डॉक्टर ए सर्जन 24 कलाक मौजूद हुंदा
1: जिते डॉक्टर आफ्ताब एवान जनरल फिजिशियन रोजानो मंझंद 2 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो मुआइनो कंदा माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
0: गायनाकोलॉजिस्ट औरतुन जाहिर डॉक्टर
1: डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वगे खां शाम 4 वगे ताईं डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमागी बीमारियुनि जो माहिर मंझंद 12 वगे खां 1 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा
0: डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिजिशियन आचर जे ॾींहुं मंझंद 2 वगे खां 3 वगे ताईं मरीजन जो मुआइनो कंदा डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद
1: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़
1: सोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: لله الحمد.
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज. अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4.

0: इसमें प्रेशर लेना चाहिए। जीआईटी में कोई और उसके हेड है तो मेरे ख्याल अभी तक उसकी रिपोर्ट आई नहीं है, तो रिपोर्ट आएगी तो आपको उसकी फैक्ट्स पता चलेगा। वो भी जो वीडियो बनी वो पूरी नहीं है, एक मूवमेंट की है जिसमें उसको पुलिस वाला गाइड करके लेके जा रहा है और जो उसके साथ बाकी प्रोटेक्शन है वो पीछे है। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें कई ऐसी बेजाबतियां थी जिनके ऊपर हमने इंक्वायरी की और जो उसके जिम्मेदार थे उनको सजा। पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस इसमें बिल्कुल मिलकर काम कर रही है।
1: मनुष्या डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी टंडे मस्ती में कार तोहमत हणी कतल कल खालदा चांडियो के कतल वारन मामलन ते पुलिस अमलदारन जी सेनेट कमेटी आड़ो पेशी। एडिशनल आईजी कराची आजाद खान घरू मामलन जी स्टैंडिंग कमेटी के ब्रीफिंग डींदे पिंकी जे नेटवर्क में सिंध ए पंजाब पुलिस जा एहलकार भी मुलविस आन, उन सभी खिलाफ कार्रवाई थन्दी। पिंकी कें भी सियासतदान जो नालो ना वरतो, उन बनी गाला जो नालो रुगो सियासी कवरअप लाए वरतो। डीआईजी सखर नासिर आफ्ताब कमेटी के बुधायो त नारी खालदा चांडियो पसंद पड़ने लाए घरां निकरी वही हुई, केस वापस कराए जिरगे में कतल की फतवा जारी कई वही। कतल केस में 10 जवाबदार गिरफ्तार किया है, को भी सजा का बची न सकंदो। कमेटी चेयरमैन समीना जहरी चौ गैरत के नाले से औरत के कतल करने की इजाजत नहीं दे सकते।

मलेशिया डीलर अनमोल उटपिनकी के प्रोटोकॉल ॾियण बारे मामले जी जांच मुकम्मल। SSP सिटी अली हसन, SHO गार्डन ऐं SIO ज़िमेवार करार। रिपोर्ट में ॼाणायो वियो आहे त SHO गार्डन हनीफ पुलिस प्रोटोकॉल ॾिनो। पिनकी के थाने में खाधो, मेकअप, कपड़ा ऐं दवाऊं फराहम कयूं। पिनकी खां अदालती पेशी ताईं SSP इन्वेस्टिगेशन सिटी ऐं DIG ॾखण खे अणॼाण रखियो वियो। पिनकी थाने ते मौजूदगी दौरान नशे जी हालत में हुई। पिनकी खे SHO पंहिंजी ऑफिस में ख़ासि महिमान जीअं विहारियो। ॿिन्ही में पैसनि जी ॾेती लेती बाबति बि ॻाल्हियूं थियूं। हुन मामले जी वधीक जांच थियणु घुर्जे।

0: ईरान के दौरे ते तेहरान पहुंतल वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी जू ईरानी कैद से मुलाकातू। वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी के पासदारन इनकलाब के कमांडर इन चीफ जनरल अहमद वहीदी ए ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात कई। मोहसिन नकवी जो इो एक हफ्ते अंदर तेहरान जो बो दौरो है।
1: सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, किसान की उम्मीद।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है। दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार।
5: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ए शिफाव पानी सेहतमंद जिंदगी की जमानत।
6: अमाजे पेंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल का खिदमत करे रहयो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओजिनेटेड यूरिफिटेड
5: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पानी की बोतल
6: 6 लीटर पानी की बोतल ए बियो पानी जो बोतल मुतारिफ कराए रहयो आहे।
5: उनका अलावा असा वट रिफिल जी सहूलत पिण सस्ते अगते मौजूद आहे।
6: अवां जे इत्माद के कायम कंदे अवां जी जरूरत जो ख्याल रखदे।
5: ऑफिस हो जाए या घर या कारोबार शादी ए बिन तकरीबन लाए हाणी असा सा राबतो करियो। असा वट मातली शहर वासिल लाए होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधिक मालूमात लाए मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पेंजे शहर मातली में अवां जे जातल सुन्यातल एवान मेडिकल सेंटर में हाने हर किस्म जा ऑपरेशन कया वनन ता जे में
1: सीजर नॉर्मल डिलीवरी अंडे पिते मसाने बे मुख्तलिफ किस्म जा ऑपरेशन कया वनन ता जे लाए मुख्तलिफ किस्म जा माहिर डॉक्टर ए सर्जन 24 कलाक मौजूद हुंदा
0: जिते डॉक्टर आफताब एवान जनरल फिजिशियन रोजानो मंजत 2 बजे खां रात 8 बजे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदा गायनेकोलॉजिस्ट आई औरतन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
1: ऐं गायनेकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
0: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वगे खां शाम 4 वगे ताईं डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंद 12 वगे खां 1 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा
1: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिजिशियन आचर जे ॾींहुं मंझंद 2 वगे खां 3 वगे ताईं मरीजन जो मुआइनो कंदा डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद
0: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962433
2: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 03125252786
1: जी हा 2315525786
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

0: It's 8:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
4: ढाडो सुठो
3: जीए FM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
5: खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: खुशखबरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अव्हां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
6: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
5: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी,
6: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
5: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान, न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण, दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
6: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
5: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
3: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
4: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
3: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
4: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
3: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझन 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
4: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
3: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकारी चौक बदीन रोड मातली।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: डॉक्टर तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
3: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
2: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
3: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
2: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
3: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
2: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं। डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
3: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
2: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींद में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230 कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं ॿारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़श ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
3: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सके।
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
6: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

अमेरिका ऐं ईरान जी वेड़ खे रोकण ज़रूरी आहे। हिक तरफ़ी गुंडागर्दी ऐं तारीख़ खे तब्दील करण वारनि क़दमनि जी मुख़ालफ़त करणी पवंदी। चीनी सदर शी जिनपिंग ऐं रूसी सदर प्यूटन विच में मुलाक़ात दौरान इतफ़ाक। बीजिंग में रूसी सदर सां मुलाक़ात दौरान चीनी सदर ॻाल्हाईंदे चयो त विच ओभर जी सूरतहाल अहम मोड़ ते आहे। छिकताण जी ॿीहर शुरूआत कंहिं बि सूरत में क़बूल नाहे। मौजूदा हालतुनि में ॻाल्हियूं वॾी अहमियत रखनि थियूं। प्यूटन चयो त आलमी सतह ते इस्तेहकाम बरक़रार रखण लाइ चीन ऐं रूस जो किरदार अहम आहे। चीनी ऐं रूसी सदरनि विच में मुलाक़ात दौरान ॿिन्ही मुल्कनि विच में स्ट्रेटेजिक सहकार जे गॾियल पधराई ते सहियूं बि कयूं वयूं दौरान ॿिन्ही मुल्कनि विच में स्ट्रेटेजिक सहकार जे गॾियल

दुश्मन जी चालाकियन मां ज़ाहिर थे तो उहे जंग जे नए दौर जी गोला में आहिनि। वधंदड़ माशी दबाव ऐं घेराव ईरान खे हथियार पिटा करण ते मजबूर नथो करे सघे। सदर ट्रम्प जी धमकियुनि ते ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकर कालिबाफ जो अर्द अमल। ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास इराक़ची चयो आहे त जंग में वापसी जी सूरत में अमरीका खे घणा सरप्राइज़ मिलंदा। जंग में जेको सिखियो आहे हुन जी मदद सां वधीक हैरत अंगेज़ रद अमल ॾींदासीं। ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास इराक़ची जो रद अमल। ईरानी नायब परडेही वज़ीर क़ासिम ग़रीब आबादी जो चवण आहे त अमरीका धमकी खे अमन जो मौको बणाए पेश करे रहियो आहे। असां कंहिं बि जारीअ जो मुक़ाबलो करण लाइ तयार आहियूं। ईरान जे दौरे ते तहरान पहुतल वफ़ाक़ी घर वज़ीर मोहसिन नक़वी जूं ईरानी क़यादत सां मुलाक़ातूं। वफ़ाक़ी घर वज़ीर मोहसिन नक़वी जे ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान, पासदारन इनकलाब जे कमांडर इन चीफ जनरल अहमद वहीदी ऐं ईरानी हमनसब सिकंदर मोमनी सां धारदार मुलाक़ात कई। मोहसिन नक़वी जो हफ़्ते अंदर तहरान जो बियो दौरो आहे।

वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सां चीन जी आला सतही वफद जी मुलाकात। चीनी वफद जी नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी जे नायब चेयरमैन जी अगवाणी में वज़ीर-ए-आज़म सां मुलाकात कई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ऐं चीन विच में तारीखी ऐं स्ट्रेटेजिक सहकार ते ॿधल भाईवारी खे साराहींदे चयो त पाकिस्तान ऐं विच चीन विच में स्ट्रेटेजिक हम आहंगी जी बुनियाद ते दोस्ती जो बेमिसाल रिश्तो कायम आहे। वज़ीर-ए-आज़म चीनी सदर खे पाक चीन लाॻापन जी 75 सालगिरह जूं वाधायूं ॾिनियूं।

0: जब कोर्ट में पेश हुई है तो उसने वो वहां पे ये बात की है और वो चूंकि बहुत चलाक सी मुलजिमा है तो उसने ये कहा सिर्फ जो रिमांड को डिनाई करने के लिए ताकि उसको रिमांड ना उसके ना मिले कि हकीकत से कोई ताल्लुक भी नहीं है। अभी तो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, अभी जो चीज उस रिमांड में है तो मेरा ये ख्याल है कि ये बिल्कुल बेस्टेस बात है।
1: ये भी चूंकि तफ्तीश अभी देखिए शुरू हुई है, उनके नाम आए हैं लेकिन मैं बिल्कुल प्री मेच्योर कोई बात करना नहीं चाहता। कोर्ट में पेशी के दौरान जो बेजाबतियां हुई उसके ऊपर हम एक एसएसपी के खिलाफ एक्शन लिया, एसएचओ के खिलाफ एक्शन लिया, एसआईओ के खिलाफ एक्शन लिया, आईओ के खिलाफ एक्शन लिया और गवर्नमेंट की इसमें रिजॉल्व है। हमें किसी तरफ से भी किसी भी तरफ से प्रेशर नहीं और ना ही इसमें प्रेशर लेना चाहिए। जीआईटी में कोई और उसके हेड हैं तो मेरा ख्याल अभी तक उसकी रिपोर्ट आई नहीं है, वो रिपोर्ट आएगी तो आपको उसकी फैक्ट्स पता चलेगी। वो भी जो वीडियो बनी वो पूरी नहीं है, एक मूवमेंट की है जिसमें उसको एक पुलिस वाला गाइड करके लेके जा रहा है और जो उसके साथ बाकी प्रोटेक्शन है वो पीछे है। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें कई ऐसी बेजाबतियां थी जिनके ऊपर हमने इंक्वायरी की और जो उसके जिम्मेदार थे उनको सजा। पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस इसमें बिल्कुल मिलकर काम कर रही है।
2: मलेशिया डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी ए टंडे मस्ती में कार तोहमत हणी कतल कल खालदा चांडो के कतल वार मामलों से पुलिस अमलदार की सेनेट कमेटी अडो पेशी। एडिशनल आईजी कराची आजाद खान घरू मामलों की स्टैंडिंग कमेटी के ब्रीफिंग डींदे पिंकी के नेटवर्क में सिंध ए पंजाब पुलिस एहलकार भी मुलविस इन सभी खिलाफ कार्रवाई थी। पिंकी कें भी सियासतदान जो नालो ना वरतो, उन बनी गाला जो नालो रुगो सियासी कवरअप लाए वरतो।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
2: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
2: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 03132525786
2: जी हा 2315-2575-786
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफाव पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
2: अवां जे पंहिंजे शहर माकली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
1: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
2: सीज़र नॉर्मल डिलीवरी अंडे पिथे मसाने ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
1: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
2: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
1: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
2: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
1: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
1: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
2: सीज़र नॉर्मल डिलीवरी आंडे पिथे मसाने ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
1: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिजिशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
2: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
1: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
2: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिजिशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
1: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश खबरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं ताकि इस बीमारी पे जल्द अज जल्द काबू पाया जा सके।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
5: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिल्क की हो तो आवाज भी सिल्क की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिल्क की आवाज।
1: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
1: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
1: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
2: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
1: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
2: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
1: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
2: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
1: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींद में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
2: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
4: जियो सिंधी।

0: Thanks for watching this video. For more updates, subscribe Shahla Gul Official.
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत ओ यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
3: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
2: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिणु मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713800392।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
2: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
3: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
2: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
3: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
2: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंद 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
3: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंद 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
2: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाड़ी चौक बदीन रोड मातली।
4: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
5: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, 2 कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
7: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते। छा अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी? हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
8: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
9: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
8: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
9: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
8: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियन कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
9: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 247-3141-200। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
7: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।